एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के आश्विन माह की तीसरी तिथि, तदनुसार दिनांक 25 सितंबर सन 2000

2026। श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 5:56 और ठीक 30 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन, सुप्रभात।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे की 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार। 6:05 से आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित चिंतन और भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की। ये यात्रा 7 अक्टूबर तक चलेगी। प्रधानमंत्री ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को समीप से समझने का अवसर देती है। भारत ने इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए दो राष्ट्र समाधान के प्रति अपने स्पष्ट और निरंतर समर्थन को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के से अलग दो राष्ट्र समाधान के कार्यान्वयन के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। मंत्रालय ने कहा कि भारत

0: राजनीतिक समर्थन के साथ व्यवहारिक सहयोग पर भी बल देता है। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भी भाग लिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $20 ट्रिलियन की है और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि भारत का नदियों के साथ संबंध हजारों वर्ष पुराना है। उन्होंने कहा कि देश के शहर, सभ्यताएं, साहित्य, संगीत, कला और परंपराएं नदियों से गहराई से जुड़ी हुई है। श्री संधू ने कल नई दिल्ली में 7वें नदी उत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि यमुना का पुनरुद्धार केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि इसे एक सांस्कृतिक अभियान के रूप में भी आगे बढ़ाना होगा। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सम्मानित किया जाएगा। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के दमखम आजमाएंगे। कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पद की संख्या 17 हो गई है जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन।
2: अहम् ब्रह्मास्मि उपनिषद का महावाक्य है। इसका शाब्दिक अर्थ है मैं ब्रह्म हूं। आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जाए तो आत्मा ब्रह्म है। कहने का अर्थ यह है कि हम सभी मनुष्यों में चेतना का पुंज है आत्मा, और यह सत्य चित्त और आनंदमय है। यही परमात्मा है। लेकिन इस परमात्मा के स्वरूप का अनुभव मनुष्य को तभी होता है जब वो अपने पूर्व संचित गुण, संस्कार और कर्म यानी प्रारब्ध पर धैर्यपूर्वक मनन करता है और सात्विक जीवन निर्वाह करता है। अहम् ब्रह्मास्मि ये अभिव्यक्त करता है कि ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां हमारे अंदर निहित होती है और हम सभी मनुष्य सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सत्य चित्त आनंदमय को प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यक यह है कि हमें संसार के मोह, माया, लोभ, ईर्ष्या और असत्य को अपने जीवन से हमेशा दूर रखना होगा। हमें अपने आत्मिक गुणों को निरंतर परिष्कृत करना होगा, तभी हम हमारे अंदर स्थित दिव्य तत्व आत्मा के चैतन्य स्वरूप यानी ब्रह्म को अनुभव कर सकेंगे। संसार मायावी है जो अज्ञानवश मोह से हम सभी को आकर्षित करती है, अनेक रूप और रंगों में हमें भटकाती है। इससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन जो मनुष्य विवेक से माया के मोहजाल से अपने को मुक्त रखता है वो आत्मा के दिव्य स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। उसे संसार की अनेकता विचलित नहीं।

इसके लिए हमें निरंतर सात्विक मूल्यों के आधार पर कार्य करना होगा। विचार, शब्द और कर्म से जीवन निर्वाह करने पर हम अहम ब्रह्मास्मि के महावाक्य को चरितार्थ कर सकते हैं। आइए आज के दिन का शुभारंभ अपने आत्मिक गुणों के विकास और अहम ब्रह्मास्मि को आत्मसात के संकल्प से।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग।

दल बल समेत भरत प्रयाग पहुंचने को हैं। गंतव्य का बड़ा भाग पार किया जा चुका है, किंतु उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। उन कष्टों की कल्पना से उनकी ग्लानी और क्षोभ बढ़ता जाता है जो श्रीराम, लक्ष्मण और सीता न जाने किस वन में भुगत रहे होंगे। प्रयाग पहुंचकर सबने विधि पूर्वक त्रिवेणी में स्नान किया और तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम कर भरत ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में जानकारी, हमारी सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की। अब से थोड़ी ही देर में यानी 6:45 पर आप सुन सकते हैं हमारे किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम खेती नी बात।

आदिवासी लोक संगीत का प्रसारण समय रहेगा 6:50 पर। कलाकार हैं उदय सिंह डामोर और साथी।

प्रातः 7:20 पर आप सुन सकते हैं वातायन। वातायन के अंतर्गत आज हम सुनेंगे कवि ब्रजमोहन तूफान से काव्य पाठ, बुलंद करो वंदे मातरम।

विविध भारती के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सवेरे 7:30 पर, 10 बजे और दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। शाम 5:05 पर प्रसारित होगा महिलाओं का अपना कार्यक्रम नारी लोक। हमारे केंद्र से प्रसारित चौपाल आप सुन सकते हैं शाम 7 बजे।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिली समाचार संध्या का प्रसारण समय रहेगा रात्रि 8:45 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले जापान में आयोजित हो रहे एशियाई खेल 2026 के 20वें संस्करण की डेली हाइलाइट्स आप सुन सकते हैं रात्रि 10 बजे।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारी सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रस्तुत है हमारे किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम खेती में बात।
1: खेती में बात कार्यक्रम हमारा सब किसान भाई ने बोले धर्मिष्ठानो राम राम राम राम। देखो भाई बुनने सब खेती बाड़ी नु काम काज करवा लागे तो कहो, क्योंकि अवड़े जे भी खरीफ नी फसल नी बुआई वगैरह कर रखी है इन्हें हार हमार करवी जरूरी है। क्योंकि देखो लगातार पानी पड़ी रही है, इन्हें कारण जी सोयाबीन है, मक्की है, साग सब्जी वगैरह है, इनमें खत पतवार खूब थी रू तक है। तो भाई खत पतवार नियंत्रण नु भी काम काज करी रहता कहा, ने टेम टेम में आना कार्यक्रम ने माध्यम थी कि आप इसके हुए कि जे भी काम है खेती बाड़ी नु अपने ध्यान थी सावधानी थी करव जरूरी है। क्योंकि कोई भी काम जल्दबाजी में करेंगा तो अपने नुकसान थवानी बातें थी सके। ने अपने तरह खेतीवाड़ी करवा वाला किसान भाई बहने तो हमेशा एनी बातों अपने ध्यान रखव जरूरी है। क्योंकि आ बरसात नो मौसम साली रो तो है, तो इने कारण लगातार पानी पड़ी करे तो खेतर में जे भी अवड़े सोयाबीन वगैरह अपने पेरी रखू है तो लगभग घना भाई ने छू ने घना भाई ने नुकसान वरुण घना भाई ने जे खेतर खाली भी पड़ी है। क्योंकि पेरवानो टाइम ज नहीं मल्यो तो ये सब भाई इनमें लागे तो कहे कि ना भाई आने फसल ने तो कहीं नहीं, पर इन हाथे साग सब्जी वरु काम भी भाई करी रहा तो कहीं। पर अवड़े जे भी आ मौसम बदलाई रो तको कि मैं देखो अवड़े बेतन दर से ताप वगैरह भी निकली रो तको है, तो इन्हें कारण बदलतु मौसम है जातो मौसम ना आवतो मौसम भी अपनी फसल है अपना स्वास्थ्य मत भी नुकसान करी सके। एटले टेम टेम मते इनु भी अपन ध्यान राखव है। जे खातर वगैरह नाखवानी समझ जरूर था तो ये खातर वगैरह भी नाखी दें, जिन हाथे अवड़ी है कि भाई खतपतवार नी दवाई है, कीट वगैरह लगवाना नी संभावना है, तो इनी दवाई नु भी उपयोग करी रहा तका ही। पर अपने सब भाई नी से है कि भाई जे भी दवाई नु उपयोग वगैरह करी रहा तो खास करीने जे कई फसल नु है कितनी दवाई है कितनी मात्रा में लेवी है ने नु समय नु भी अपने ध्यान रखव जरूरी है। क्योंकि देखो अपने समय मिली जाए अपने दवाई वगैरह भी साठवा नु काम करो, दवाई वधारो पानी कम हो तो भी नुकसान है, ने पानी कम है दवाई वधारो तो भी नुकसान है। एटले पानी ने दवाई नी मात्राओं में जीव जीने अनुसार अपने मात्रा जुए एवं अपने लाइन उपयोग करेंगा तो बढ़िया रहेगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील विल हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आदिवासी लोक संगीत के अंतर्गत उदय सिंह डामोर और साथी कलाकारों के गाए लोक भजन।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई

0: सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: उदय सिंह डामोर और साथी कलाकारों के गाए इस लोक भजन के साथ ही आदिवासी लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है वातायन। वातायन के अंतर्गत आज हम सुनेंगे कवि ब्रजमोहन तूफान से काव्य पाठ, बुलंद करो वंदे मातरम।
1: देश की आजादी का अमोघ मंत्र वंदे मातरम, तिरंगे की आन बान शान वंदे मातरम, हर भारतवासी की दिल का मान वंदे मातरम। वंदे मातरम के गान का, उस गीत का 150 वर्ष यानी कि यूं कहें कि 2 अमृत महोत्सव पूर्ण हुए, इस पर रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। वंदे मातरम को बुलंद करो, पो फटते ही मैं जागा, पो फटते ही मैं जागा और चारपाई पर लेटे लेटे जगत के मानव के कर्मों के बारे में सोचने लगा, जगत के मानव के कर्मों के बारे में सोचने लगा। इस कलयुग में मानव बन बैठा है दानव, इस कलयुग में मानव बन बैठा है दानव, अपनी और अपनों के बीच खाई अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, अपने और अपनों के बीच खाई अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, जात पात में गहरी खाई, चहुदिशी खून खराबा और लड़ाई, स्वार्थ के खातिर राष्ट्रभक्ति बिसराई, स्वार्थ के खातिर राष्ट्रभक्ति बिसराई, भारत माता की जय वंदे मातरम भी लड़खड़ाई। ये सब देख हुआ मन बड़ा बेचैन, ये सब देख हुआ मन बड़ा बेचैन, दूषित राजनीति, झूठ फरेब और अत्याचार की नीति, काले कारनामों को दबाने का जतन, तभी तो हुआ इस मुल्क का पतन, तभी तो हुआ इस मुल्क का पतन। ये देशद्रोही नासूर हैं कलयुग के, ये देशद्रोही नासूर हैं

युग के यूं कहें कि दानव हैं इस युग के, यूं कहें कि दानव हैं इस युग के, अपने निहित स्वार्थों के खातिर, अपने निहित स्वार्थों के खातिर अपना जमीर धर्म कर्म और राष्ट्र धर्म, अपना जमीर धर्म कर्म और राष्ट्र धर्म और उसका मर्म भूल बैठे हैं, और उसका मर्म भूल बैठे हैं। यही जयचंद मीर जाफर के बेटे हैं, यही जयचंद मीर जाफर के बेटे हैं। अपने झूठे फरेबी कर्मों के मद में ऐठे हैं, हर प्रकार का अनाचार, हर प्रकार का अनाचार और मां भारती के साथ गद्दारी को सद्विचार बताने वाले, अपने और अपनों को स्वयं ही नंगा कर रहे हैं। इसे ही शिष्टाचार और नीतिगत बताने की होड़ में वे अहर्निश लगे हैं। आजादी के अमृत काल और वंदे मातरम के दोहरे अमृत काल, यानी के 150 वर्ष की वंदे मातरम के गीत को भी भुलाने लगे हैं। अरे ये झूठ को सच और सच को झूठ बताने में लगे हैं, ये झूठ को सच और सच को झूठ बताने में लगे हैं। जनता को भ्रमित कर दें, राष्ट्रीयता को पाखंड बताने में अहर्निश लगे हैं। फिर भी वे ठगे के ठगे हैं, फिर भी वे ठगे के ठगे हैं। तभी मैंने चारपाई छोड़ी, तभी मैं चारपाई छोड़ी, अपनी तंद्रा तोड़ी, रेडियो पर वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सुन नेत्र सजल हो उठे, रेडियो पर वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सुन नेत्र सजल हो उठे। बाहर अहते में आया तो दूर कवि प्रदीप का एक गाना बज रहा था, दूर कवि प्रदीप का एक गाना बज रहा था। बोल कुछ ऐसे थे, आज के इस इंसान को ये क्या हो गया। मैंने उस भविष्यवेत्ता गीतकार, मैंने उस भविष्यवेत्ता गीतकार के अतीत में लिखे गीत पर आभार जताया, मैंने उस भविष्यवेत्ता गीतकार के अतीत में लिखे गीत पर आभार जताया। ये इंसान के रूप में हैवान हैं, लोग इन्हीं गद्दारों से परेशान हैं, यूं कहें कि हैरान हैं। देश से चुन चुन कर ऐसे हैवानों को मिटाइए, देश से चुन चुन कर ऐसे हैवानों को मिटाइए, अपने भारतवर्ष को फिर से सोने की चिड़िया बनाइए, अपने भारतवर्ष को फिर से सोने की चिड़िया बनाइए। जागो देश के लोगों, जागो देश के लोगों, देशभक्ति की पो फट गई है, देशभक्ति की पो फट गई है। नया सवेरा विकसित भारत का है, नया सवेरा विकसित भारत का है। भारत माता के सपूतों जय घोष करो, भारत माता के सपूतों जय घोष करो, वंदे मातरम को बुलंद करो, वंदे मातरम को बुलंद करो। मेरी एक और रचना, सामाजिक परिवेश में मां पर, पिता पर, बहन पर और न जाने कई विषयों पर लिखी गई, लेकिन मैंने अपने भ्राता पर कविता लिखने का प्रयास किया है, प्रस्तुत है। भाई भाव का तिलक है, भाई भाव का तिलक है, भाई भुजाओं में शौर्य का संचार है, भाई सुरक्षा का अमोघ कवच है, भाई सुख दुख का साथी है, भाई जब आए कोई संकट, समस्याएं खड़ी हो बड़ी विकट, कष्टों का आगमन हो निकट, तब मानस पटल पर एक ही सहयोगी दिखाई देता है, वह है भाई। कहते हैं भाई हो तो राम लक्ष्मण सा, कहते हैं भाई हो तो राम लक्ष्मण सा, असत्य अत्याचार के खिलाफ खड़ा हो विभीषण सा, असत्य अत्याचार के खिलाफ खड़ा हो विभीषण सा। भाई हो तो हर संकट आसान लगता है, भाई हो तो हर संकट आसान लगता है।

0: उसके बिना सब कुछ वीरान लगता है, उसके बिना सब कुछ वीरान लगता है। भाई प्यार है, सहकार है, दुलार है। भाई प्यार है, सहकार है, दुलार है। भाई परिवार के लिए पूरा संसार है। भाई परिवार के लिए पूरा संसार है। भाई बिन परिवार के संगठन की कल्पना अधूरी है। भाई बिन परिवार के संगठन की कल्पना अधूरी है। भाई छोटा हो या बड़ा, वही संगठन की मुख्य धुरी है। भाई है तो हर समस्या के समाधान की गारंटी पूरी है। भाई है तो हर समस्या के समाधान की गारंटी पूरी है। दुश्मन के लिए भाई छुरी है, दुश्मन के लिए भाई छुरी है। आचार विचार व्यवहार का पर्याय है भाई। पृष्ठबल आत्मबल संबल का अभिप्राय है भाई। मेहनत हिम्मत कीमत की पूरी आय है भाई। भाई बिन जीवन निरस, भाई बिन जीवन निरस। भाई बिन हिम्मत नगण्य, भाई बिन संसार असार। यही है गीता का सार, यही है गीता का सार। भाई राम लक्ष्मण कृष्ण बलराम सा हो, भाई विजय का पर्याय, भाई तारणहार, भाई हिम्मत दिलाने वाला। भाई विजय का पर्याय, भाई तारणहार, भाई हिम्मत दिलाने वाला। इसलिए कलयुग में कुटुंब प्रबंधन बनाए रखना, परिवार को टूटने न देना, परिवार को टूटने न देना। सब कुछ हार कर खो कर भी भाई को खोने न देना, सब कुछ हार कर खो कर भी भाई को खोने न देना। प्रेम प्यार की प्रतिमूर्ति है भाई, सारा जग देता है दुहाई। प्रेम प्यार की प्रतिमूर्ति है भाई, सारा जग देता है दुहाई। भाई भ्राता अनुज अग्रज है, इसी में दुनिया का हर कार्य सहज है। मैं भी तुम भी हम सब भी बड़प्पन दिखाएं, भाई को गले लगाएं। भाई तो रक्षा कवच है, भाई है तो बहन के लिए राखी है। भाई बिन दुनिया में बिंदास घूम नहीं सकते, इसलिए भाई से हम कभी बैर कर नहीं सकते। भाई का साथ जरूरी है, जीवन के हर मोड़ पर उसका संबल जरूरी है। सच कहूं तो भाई बिना दुनिया अधूरी है। भाई है तो सफलता की धुरी है, भाई है तो सफलता की धुरी है, भाई है तो सफलता की धुरी है।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे वातायन के अंतर्गत कवि ब्रजमोहन तूफान से काव्य पाठ। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। 7:30 हुए हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आप सभी को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज फिल्मों के मशहूर अभिनेता, निर्माता और निर्देशक फिरोज खान की जयंती है। आज हम इस कार्यक्रम में उन्हीं को याद कर रहे हैं उनकी फिल्मों के माध्यम से।

0: फिल्म धर्मात्मा का ये गीत आपने सुना मुकेश और कंचन की आवाजों में। गीतकार थे इंदिवर और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।
1: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की

0: जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
1: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये था फिल्म अपराध का दो गाना, गायक थे किशोर कुमार और आशा भोसले, गीत के बोल लिखे इंदिवर ने, संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध

0: इस अंतराल से पहले आपने जो गाना सुना उसको हमने लिया था फिल्म नागिन से। आवाजें थी लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की, गीतकार थे वर्मा मलिक, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: अभी आपने सुना फिल्म मेला का गाना, आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे आरडी बर्मन।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
0: आइए सुनते हैं अगला गीत।

0: अभी आपने सुना फिल्म आदमी और इंसान का गाना, युगल स्वर थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर के, बोल साहिर लुधियानवी के और तर्ज थी रवि की।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है

अभी आपने सुना एक सपेरा एक लुटेरा फिल्म का गाना। आवाजें थी मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की। गीतकार थे असद भोपाली। संगीत था उषा खन्ना का। अब इसी के साथ आज का हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार प्रभात। समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। जापान एशियाई खेलों में कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में पहुंची और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस कार्यक्रम में सेवा यात्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और 7 अक्टूबर तक चलेगी। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की और सेवा कार्यों में हिस्सा लिया। वाराणसी और वडनगर के बीच विभिन्न स्थानों में चल रही इन मोटरसाइकिल यात्राओं का उद्देश्य युवाओं को जनसेवा और समाज से जोड़ना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को नजदीकी से समझने का अवसर प्रदान करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर तक सेवा की भावना पहुंचाने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।
2: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे श्री अन्न यानी मिलेट्स के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहारिकता में लाया गया है।

0: भारत की पारंपरिक कृषि व्यवस्था में बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, सांवा और राजगिरा सदियों से भोजन का हिस्सा रहे हैं। इन्हें श्री अन्न के नाम से आज व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत सरकार ने श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाए जाने के बाद श्री अन्न को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। श्री अन्न में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये मधुमेह, मोटापा और हृदय रोग सहित कई बीमारियों में लाभकारी है। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर पुनीत सक्सेना का कहना है कि श्री अन्न ग्लूटेन फ्री है और गेहूं और चावल की तुलना में अधिक पौष्टिक है।
1: मिलेट्स, जिसको कि हम मोटा अनाज या श्री अन्न भी कहते हैं, और इसमें हम मोटा मोटा बात करते हैं बाजरा की, ज्वार की, रागी की। रिफाइंड सीरियल्स के मुकाबले इनमें न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है एवं ये ग्लूटेन फ्री होते हैं।
0: श्री अन्न कम पानी में उगने के कारण जल संरक्षण और जलवायु अनुकूल खेती को भी बढ़ावा देते हैं। राजस्थान में बाजरा और अन्य मोटे अनाजों की खेती पहले से ही बड़े पैमाने पर होती रही है। अब इनके उत्पादन के साथ साथ प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और बाजार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। किसानों को उन्नत किस्मों, बेहतर कृषि तकनीक और श्री अन्न आधारित उत्पादों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
3: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। अब यह पहल भारत में इन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कौशल, प्रौद्योगिकी और क्षमता विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
5: भारत ग्लोबल बिजनेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। एक रिपोर्ट।
6: प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के तहत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेबल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है, ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और उसमें इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित न किया जा सके। प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 में संशोधन के अंतर्गत रखा है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने

0: है कि इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से।
1: 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के इस आयोजन में भाग लेने की उम्मीद है। इस संस्करण के साझेदार देशों में ऑस्ट्रिया, जापान, रूस, सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम शामिल हैं। इसके अलावा व्यापार और उद्योग में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हुए करीब 300 महिला प्रतिनिधि भी आयोजन में भाग लेंगी। प्रदर्शनी में कृषि, ऑटोमोबाइल, रक्षा, आईटी, स्वास्थ्य, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष का एक प्रमुख आकर्षण एक जिला एक व्यंजन पहल की शुरुआत है। इसे एक जिला एक उत्पाद योजना के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजन में ज्ञान सत्र, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अंकित कुमार के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरूआत की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में इस सेवा की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 वर्ष से बंद सार्वजनिक बस सेवा अब फिर से शुरू की जा रही है।
2: सेवा संकल्प सप्ताह के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार 21 साल बाद वापस लोक परिवहन की बस सर्विसेज की सेवा शुरू करने जा रही है। ये अपने आप में यूनिक मॉडल है। आधुनिकतम नई तकनीक की ई बस सेवा से लगा करके सभी प्रकार की सर्व सुविधायुक्त सभी प्रकार की बसें चरणबद्ध रूप से लगभग हर नगर, हर जिला तक हम अपने नीचे तक नेटवर्क ले जाने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल का अंत्योदय का दर्शन आज भी जन कल्याण और राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरणा देता है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और इससे सटे दक्षिण ओडिशा के ऊपर बना गहरा दबाव अब कमजोर होकर निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओडिशा के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी है।
3: कमजोर पड़े डिप्रेशन के असर से दक्षिणी और पश्चिमी ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। राज्य सरकार के अनुसार दर्जनों ब्लॉक और गांवों में बारिश का असर देखा गया है और 8000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बालेश्वर जिले के मथानी में जलका नदी में बाढ़ की गंभीर स्थिति है और बस्ता के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने ओडिशा में बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया है। अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में आपदा प्रतिक्रिया टीमों को अलर्ट पर रखा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब जापान में जारी एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
4: जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के लिए दमखम आजमा रहे हैं। कमलजीत और सुरचित सिंह की जोड़ी ने आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने क्वालिफाइंग राउंड में पहला स्थान हासिल किया। वहीं कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: और फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय पुरुष शतरंज टीम ने कल समरकंद में अजरबैजान के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
5: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी मंत्रालयों से 5 वर्ष की आगामी रूपरेखा मांगने के निर्देश को अपनी सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, फाइलों से निकले मंत्री जमीन पर देखें योजनाओं का लाभ। वडनगर से वाराणसी तक सेवा संकल्प यात्रियों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री का बयान, सत्ता कितनी भी बड़ी हो हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा, लोक सत्य में है। पत्र ने वैश्विक साइकिलिंग कार्यक्रम के पहली बार भारत में आयोजित होने को भी सुर्खी बनाया है। पत्र के शब्द हैं, भारत को मिली रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2032 की मेजबानी, यूसीआई पुणे में करेगा आयोजन। गन्ने से जल्द तैयार होगा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, हिंदुस्तान की सुर्खी है।

0: पत्र ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा इससे जुड़े प्रोडक्ट को औपचारिक मंजूरी मिलने की खबर प्रकाशित की है। नवभारत टाइम्स ने राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच जारी सैन्य अभ्यास पर सुर्खी दी है। युद्ध अभ्यास में दिखी भारत यूएस की जुगलबंदी। अमर उजाला के कारोबार पन्ने की खबर है, दूसरी छमाही में श्रम बल में 5.4% बढ़ोतरी का अनुमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच कल अमेरिका में हुई बातचीत पर पंजाब केसरी लिखता है, ट्रंप का जिनफिंग से मिलकर काम करने का वादा।
1: धन्यवाद अलका। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में। और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कुछ दिल से।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मीनाक्षी उपाध्याय का नमस्कार। श्रोताओं, भारतीय संस्कृति में पर्व केवल तिथियों का आगमन नहीं, वे जीवन के उन शाश्वत मूल्यों की स्मृति है जो हमें अपनी जड़ों, अपनी आस्था और अपने संस्कारों से जोड़ते हैं। ये त्योहार हमारी परंपराओं की जीवंत धरोहर है जो हमारे भीतर विश्वास का दीप जलाते हैं। हमारी संस्कृति की यही तो विशेषता है। यहां एक धागा भी विश्वास बन जाता है, एक पर्व भी जीवन जीने की गहरी सीख दे जाता है। ऐसा ही एक पर्व है अनंत चतुर्दशी। आकाशवाणी परिवार की ओर से सभी सुधी श्रोताओं को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाने वाला यह पर्व भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप को समर्पित है। और श्रोताओं, आज के दिन एक विशेष अवसर है, भगवान गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन होता है। वक्रतुंड की मुस्कान में मंगल है, गजानन के स्मरण में शुभता और गणपति के चरणों में समर्पित हर भाव में जीवन को नई दिशा देने वाली आस्था है। श्रोताओं, आज वातावरण में भक्ति भी है और एक हल्की सी भावुकता भी। आंखों के सामने वही प्रिय विघ्न हरता है जिनका आगमन घर आंगन में उत्सव लेकर आया था, जिनके स्वागत में दीप जले, मंगल गान हुए और जिनके सम्मुख मन ने अपनी छोटी बड़ी सभी कामनाएं रख दी। और अब समय है विदाई का।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अनंत अर्थात जिसका न आदि है न अंत, उस विराट सत्ता का बोध जिसमें संपूर्ण सृष्टि समाहित है। आकाश की अनंतता, समुद्र की गहराई, समय की निरंतर गति और मानव की असीम संभावनाएं सब हमें इस अनंत भाव का स्मरण कराती है। अनंत चतुर्दशी की कथा हमें सत्य, धैर्य और विश्वास की महत्ता बताती है। श्रोताओ, आज के दिन श्रद्धालु भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं और अपनी कलाई पर चतुर्दश गांठों वाला अनंत सूत्र धारण करते हैं। यह सूत्र केवल धागा नहीं, विश्वास का प्रतीक है। ऐसा विश्वास जो जीवन की अस्थिरताओं के बीच हमें धैर्य और संबल प्रदान करता है। श्रोताओ, कहते हैं उत्सव का अंत विदाई से नहीं बल्कि एक नए विश्वास के साथ आरंभ होता है। गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन भी इसी भाव का प्रतीक है। मूर्ति जल में विलीन होती है पर श्रद्धा हृदय में और अधिक गहरी उतर आती है।

भारत की कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत और करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है। इस कृषि यात्रा में हमारी महिला किसान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। खेत से लेकर खाद्य सुरक्षा तक उनके योगदान को नमन। वर्ष 2026 मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। इसी अवसर पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC लेकर आया है कृषि सखी अभियान, महिला किसानों के सम्मान, जागरूकता और सशक्तिकरण की एक पहल। क्योंकि खेती आपकी मेहनत है, आपके सपनों की फसल है और इसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक जोखिमों से फसल को सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। आइए महिला किसानों के योगदान को सम्मान दें, हर किसान को जागरूक बनाएं और सुरक्षित कृषि की ओर आगे बढ़ें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, महिला किसान सशक्त तो भारत समृद्ध।

श्रोताओं, चतुर्दश गांठों वाला अनंत सूत्र मानो जीवन के अनेक संकल्पों को एक साथ बांधता है। हर गांठ जैसे कहती है, मुसीबत आए तो घबराना मत, समय बदले तो विश्वास मत खोना। जीवन की यात्रा सीधी रेखा नहीं, कभी रास्ते सहज होते हैं तो कभी पग पग पर चुनौतियां, कभी मन प्रसन्न रहता है तो कभी अनिश्चितताओं के बादल घेर लेते हैं। ऐसे समय में विश्वास ही है जो हमें भीतर से थामे रखता है। अनंत चतुर्दशी का अनंत सूत्र इसी विश्वास का स्मरण करवाता है। और मिट्टी से बने गणेश जी मिट्टी में ही लौट जाते हैं, मानो प्रकृति स्वयं कह रही हो, आगमन भी मेरा, विसर्जन भी मेरा। रूप बदलता है पर आस्था नहीं बदलती।

0: भारत की कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत और करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है। इस कृषि यात्रा में हमारी महिला किसान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। खेत से लेकर खाद्य सुरक्षा तक उनके योगदान को नमन। वर्ष 2026 मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। इसी अवसर पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC लेकर आया है कृषि सखी अभियान, महिला किसानों के सम्मान, जागरूकता और सशक्तिकरण की एक पहल। क्योंकि खेती आपकी मेहनत है, आपके सपनों की फसल है और इसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक जोखिमों से फसल को सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। आइए महिला किसानों के योगदान को सम्मान दे, हर किसान को जागरूक बनाएं और सुरक्षित कृषि की ओर आगे बढ़ें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, महिला किसान सशक्त तो भारत समृद्ध।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, गणेशोत्सव के समापन का

यह दिन श्रद्धा और उल्लास से भरे वातावरण में एक भावुक विराम देता है। कितना अद्भुत दृश्य होता है ना? सजाए हुए रथ, भक्ति में डूबे चेहरे, ढोल की गूंज, तालियों की लय और वातावरण में गूंजता स्वर, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल दिया। इन जयघोषों के बीच एक भाव होता है विदाई का, हर अंत के भीतर एक नई शुरुआत की संभावना खोजने का। मिलना बिछड़ना, आना जाना, निर्माण विसर्जन, जीवन इन दोनों पहलुओं के बीच की कहानी लिखता है। गणेश जी का विसर्जन हमें यह सीख देता है कि किसी रूप का अंत भावनाओं का अंत नहीं। प्रतिमा जल में विलीन हो जाती है, लेकिन गणेश जी के प्रति श्रद्धा हृदय में बनी रहती है। उत्सव समाप्त हो जाता है, लेकिन मधुर स्मृतियां हमारे भीतर लंबे समय तक जीवित रहती है।

ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारे जीवन में विश्वास बना रहे, कर्मों में सद्भाव बना रहे, संबंधों में प्रेम बना रहे और हमारी आशाओं का आकाश सदैव अनंत रहे। सभी सुधी श्रोताओं को पुनः अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुछ दिल से। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए राजस्थानी लोक संगीत।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
4: राजस्थानी लोक संगीत अब यहीं सम्पन्न होता है। FM बैंड 101.3।

93.3 MHz पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 9 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जयपुर, जोधपुर और कोटा में महापौर तथा सुकेत में नगरपालिका अध्यक्ष के लिए आज मतदान। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जयपुर दौरे पर, दादिया में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने राजस्थान यूनिवर्सिटी सहित 3 विश्वविद्यालयों में कुलगुरु नियुक्त किए। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर आज से 3 दिन का आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम और अनंत चतुर्दशी पर आज गणपति विसर्जन के साथ 10 दिन से चल रहा गणेशोत्सव संपन्न होगा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। नगरीय निकाय चुनावों के तहत जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम के महापौर तथा कोटा जिले की सुकेत नगरपालिका के अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। इसके तुरंत बाद मतगणना शुरू होगी। जयपुर में भाजपा के सुनील कोठारी और कांग्रेस की सुनीता मावर आमने सामने हैं। वहीं जोधपुर में भाजपा के प्रसन्न चंद मेहता और कांग्रेस के राजेंद्र सिंह सोलंकी तथा कोटा में भाजपा की अनुसुईया गोस्वामी और कांग्रेस की सुनीता सुमन महापौर पद के लिए प्रत्याशी हैं। महापौर और अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद कल जयपुर, जोधपुर और कोटा में उप महापौर तथा सुकेत में उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान कराया जाएगा। राजधानी जयपुर में आज स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। अल्बर्ट हॉल पर आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। उन्होंने लोगों से स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि स्वच्छता हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अपने शहर को साफ रखने में हर नागरिक को योगदान देना चाहिए।
1: जैसे कोई भी बाहर से आता है, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए आता है, चाहे टूरिज्म के लिए आता है, सब लोग सबसे पहले क्लीनिनेस देखते हैं, स्वच्छता देखते हैं किसी भी शहर की। तो इसमें अगर हम लोग भी तो नागरिक हैं। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार का काम नहीं है, उनका तो है ही, लेकिन एक नागरिक का भी कर्तव्य है कि हम हमारे शहर को, हमारे एनवायरमेंट को साफ रखें, संरक्षित रखें, और उसमें हमारी ओर से क्या हो सकता है, हमारा योगदान क्या हो सकता है, उसको हम लोग करें, पूरी तरह से निभाएं, खुद भी करें और दूसरों से भी करवाएं।
0: श्री नवीन जयपुर के दादिया में सेवा संकल्प समारोह में शामिल होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आयोजित इस समारोह में विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इसके बाद वे जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में युवा संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने राजस्थान के 3 विश्वविद्यालयों में कुलगुरु नियुक्त किए हैं। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय में डॉ भगवती प्रसाद सारस्वत को कुलगुरु नियुक्त किया है। वहीं सीकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में डॉ युद्धवीर सिंह तथा बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई को कुलगुरु बनाया गया है। ये नियुक्तियां राज्य सरकार के परामर्श से की गई हैं। तीनों का कार्यकाल कार्यभार संभालने की तारीख से 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु पूरी होने तक रहेगा। प्रदेश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 के तहत ऐसे

0: पात्र कर्मचारियों को ईपीएफ के दायरे में लाने का अवसर दिया जा रहा है, जो संस्थान में कार्यरत होने के बावजूद अब तक भविष्य निधि का सदस्य नहीं बन पाए हैं। ये जानकारी ईपीएफओ के अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त और राजस्थान प्रभारी अजीत कुमार ने जयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान में 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच नियुक्त और वर्तमान में सेवा में कार्यरत पात्र कर्मचारी शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR न्यूज और Facebook AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आज से 3 दिन का आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम शुरू हो रहा है। महिला और बाल विकास विभाग की शासन सचिव पूनम ने बताया कि ये आयोजन विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य जनसेवा, सामाजिक सरोकार और पोषण तथा स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और संस्था प्रधानों से कार्यक्रम में जनभागीदारी की अपील की है। राज्य के 65,000 से अधिक सरकारी स्कूलों का सघन तकनीकी सर्वे पूरा कर लिया गया है। सर्वे में 3,587 जर्जर स्कूल भवनों और करीब 71,000 कक्षा कक्षों में सुधार के लिए चिन्हित किए गए हैं। स्कूल भवनों के पुनरुद्धार और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार पर लगभग 12,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये जानकारी जयपुर में राज उन्नति की 9वीं बैठक में स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा के दौरान दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को सभी कार्य तय समय में और पूरी गुणवत्ता के साथ करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत करीब 46 लाख विद्यार्थियों को नियमित और गुणवत्तापूर्ण दूध उपलब्ध कराने को कहा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा है कि इसे डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के तहत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेबल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है ताकि उत्पाद उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और उसमें इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित नहीं किया जा सके। प्रदेश भर में अनंत चतुर्दशी आज श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। सभी जगहों पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जा रही है, साथ ही लोग कथा का वाचन कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। इसी के साथ 10 दिन का गणेश उत्सव आज संपन्न हो रहा है। विभिन्न स्थानों पर गाजे बाजे के साथ गणपति विसर्जन किया जाएगा। कोटा में विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, इसमें 200 से अधिक मनमोहक झांकियां शामिल होंगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता।
1: अनंत चतुर्दशी शोभा यात्रा के लिए कोटा शहर पूरी तरह सज धज के तैयार है। आज 11:30 बजे सूरज पोल गेट से निकलने वाली इस भव्य शोभा यात्रा में 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है। इस बार जुलूस में 90 अखाड़े, 200 झांकियां और केरल की पारंपरिक मार्शल आर्ट कलरी मुख्य आकर्षण रहेंगे। 5 किलोमीटर लंबे जुलूस मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए 150 स्वागत समितियां बनाई गई हैं। सुरक्षा के लिए 350 से अधिक स्वयंसेवक मुस्तैद रहेंगे। वहीं गणपति विसर्जन के लिए बाहरदरी, भीतरिया कुंड और मोजी बाबा की गुफा में अस्थायी कुंड भी बनाए गए हैं। बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन हेतु क्रेन और नगर निगम की गाड़ियां तैनात की गई हैं। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा।
0: पाली में सिरे घाट पर गणेश प्रतिमाएं विसर्जन के लिए पहुंच रही हैं। इसे देखते हुए विसर्जन स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल से पितृपक्ष शुरू होंगे। तिथि क्षय के कारण इस बार पितृपक्ष 15 दिनों का होगा। इस दौरान श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के माध्यम से पितरों का स्मरण किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा है कि अवैध खनन, बजरी परिवहन और भ्रष्टाचार के मामलों में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने ये बात करौली में आयोजित उच्च स्तरीय अपराध समीक्षा बैठक में कही। श्री शर्मा ने संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और साइबर अपराध पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अगले 3 महीने में 1 वर्ष से अधिक पुराने लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने को कहा।

0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जयपुर, जोधपुर और कोटा में महापौर तथा सुकेत में नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जयपुर दौरे पर, दादिया में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने राजस्थान यूनिवर्सिटी सहित 3 विश्वविद्यालयों में कुलगुरु नियुक्त किए। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर आज से 3 दिन का आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम और अनंत चतुर्दशी पर आज गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ 10 दिन से चल रहा गणेशोत्सव सम्पन्न होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये अमीर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज। इसके साथ ही दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर नाथ द्वारा।
1: हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 9:10 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज आपको सुनवाते हैं चुनिंदा कलाकारों की गाई चुनिंदा भक्ति रचनाएं। शुरुआती रचना आप सुन रहे हैं सचेत टंडन और साथी कलाकारों की आवाज में।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट

0: पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: अगली रचना आपको सुनवा रही है राजा सिन्हा की आवाज में।

0: डॉक्टर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: भारत की कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत और करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है। इस कृषि यात्रा में हमारी महिला किसान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। खेत से लेकर खाद्य सुरक्षा तक उनके योगदान को नमन। वर्ष 2026 मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। इसी अवसर पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC लेकर आया है कृषि सखी अभियान, महिला किसानों के सम्मान, जागरूकता और सशक्तिकरण की एक पहल। क्योंकि खेती आपकी मेहनत है, आपके सपनों की फसल है और इसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक जोखिमों से फसल को सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। आइए महिला किसानों के योगदान को सम्मान दें, हर किसान को जागरूक बनाएं और सुरक्षित कृषि की ओर आगे बढ़ें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, महिला किसान सशक्त तो भारत समृद्ध।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील विल हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: भारत की कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत और करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है। इस कृषि यात्रा में हमारी महिला किसान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। खेत से लेकर खाद्य सुरक्षा तक उनके योगदान को नमन। वर्ष 2026 मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। इसी अवसर पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC लेकर आया है कृषि सखी अभियान, महिला किसानों के सम्मान, जागरूकता और सशक्तिकरण की एक पहल। क्योंकि खेती आपकी मेहनत है, आपके सपनों की फसल है और इसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक जोखिमों से फसल को सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। आइए महिला किसानों के योगदान को सम्मान दें, हर किसान को जागरूक बनाएं और सुरक्षित कृषि की ओर आगे बढ़ें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, महिला किसान सशक्त तो भारत समृद्ध।
3: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस दिए, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: सुगम संगीत।

हम आकाशवाणी बांसवाड़ा की माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: जोहार और नमस्कार सभी श्रोताओं को, मैं विमलेश
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा जी ने। वो लिखते हैं,
1: शिक्षा से बड़ा कोई और शक्तिशाली शस्त्र नहीं है जो परिवर्तन ला सकता है।
2: धन्यवाद आपके संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: पहला संदेश हमें मिला है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये और राधिका गजभिये जी का, सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जसल जी का भी,
2: महाराष्ट्र ठाणे से शोभा राणे,
1: ग्राम करगी खुद जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पूजा पटेल,
2: कांडला बंदर कच्छभुज से जगदीश जोहरी, पूजा और पायल,
1: और गांव खिंदासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी,
2: गुजरात गांधी ग्राम से प्रवीण सोनी और जगदीश सोनी।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
2: अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। तो अजीत जी क्या बात की जाए आज।

0: तो फिर जो बोले सो कुंडा खोले।
1: तो चलिए मैं ही कुंडा खोलती हूँ
0: जी।
1: मैं बात कर रही हूँ लाल रंग के लेटर बॉक्स के बारे में।
0: हिंदी में कहते हैं पत्र पेटी।
1: बिल्कुल, भारत में पहली बार लेटर बॉक्स का उपयोग हुआ 1874 में। लेकिन आपको पता है शुरू से ही इसका रंग लाल नहीं था।
0: अच्छा?
1: ये हरे और पीले रंग का भी हुआ करता था
0: जी।
1: और ये क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा
0: जी। लगभग 20 वर्षों तक ये हरे रंग का हुआ करता था लेकिन बाद में इसे लाल रंग कर दिया गया।
1: लेकिन कारण तो बताइए कि क्यों लाल कर दिया गया?
0: विमलेश जी, इसके पीछे गहरा शोध छिपा हुआ है। महसूस किया गया कि पहाड़ी और सुदूर इलाकों में जहाँ कोहरा होता था या घने जंगल होते थे वहाँ हरे रंग की पत्र पेटी दिखाई ही नहीं पड़ती थी।
1: जी हाँ श्रोताओ, विशेष करके सेना के उन जवानों के लिए खराब मौसम में इन रंगों को देखना कठिन होता था, इसलिए बाद में लाल रंग को चुना गया जिसे दूर से भी आसानी से दूसरे रंगों की अपेक्षा साफ साफ देखा जा सकता था।
0: यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। हालांकि डाक विभाग ने अलग अलग काम के लिए अलग अलग रंग के बॉक्स भी बनाए हैं।
1: अजी जी, एक बात और जोड़ दूं, लाल रंग सबसे चमकदार तो है ही लेकिन ये किसी इमरजेंसी और कार्य की गंभीरता को भी दिखाता है।
0: बिल्कुल जी।
1: वैसे भारत में कई आकार के लेटर बॉक्स बनाए गए थे लेकिन अंत में
0: लोगों को सिलेंडर के आकार वाले बॉक्स ही पसंद आए, इसीलिए लाल रंग का लेटर बॉक्स सबके चलन में आ गया।
1: आज जरूर इसका उपयोग कम हो गया है लेकिन ये तो जरूर कहना होगा कि आज भी दूर दराज के क्षेत्रों में इसका उपयोग बरकरार है, जरूरी दस्तावेज भेजने के काम में। और तो और ये हमारी सुनहरी याद भी तो है।
0: जी हाँ, सच में ये हमारी बड़ी सुनहरी याद है। आज भी हम उस समय को याद करते हैं। धन्यवाद विमलेश जी, श्रोताओं को ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। अब आज का प्रश्न सुनते हैं आज ही की जानकारी से। तो प्रश्न है,
1: लेटर बॉक्स का रंग लाल ही क्यों चुना गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: लेटर बॉक्स का रंग लाल ही क्यों चुना गया? हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर या
1: 8800440559 पर आप अपना उत्तर भेज सकते हैं।
0: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
1: तो प्रस्तुत है कार्यक्रम अंधेरे का उजाला। श्रोताओ, ये कार्यक्रम विशिष्ट उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं पर निर्मित श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है जिसमें एक नारी के संघर्ष की हृदय को छू लेने वाली गाथा प्रस्तुत की गई है।

0: नमस्ते प्रबोध।
1: रमन नमस्ते।
0: कहो कैसे हो?
1: मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ यात्रा कैसी रही?
0: हाँ यात्रा तो ठीक रही भाई, मुझे तो कुछ पंक्तियां यहाँ खींच लाई हैं।
1: मतलब?
0: अरे भाई मैं उस लेखिका की बात कर रहा हूँ जिसके लेख तुम समय समय पर मुझे भेजते रहे हो।
1: समझा
0: प्रबोध, मेरी बड़ी इच्छा है कि कोलकाता जाने से पहले एक बार उस हस्ती से मिल लो। तुम जानते हो ना उसे?
1: हाँ जानता तो हूँ।
0: तो फिर मुलाकात हो सकती है
1: भाई, कोशिश करके देखते हैं।
0: कोशिश करो।
2: साहब चाय।
1: रख दो सामने, रख दो। रमन
0: हाँ,
1: कोशिश कामयाब हो गई।
0: अरे
1: हाँ,
0: मतलब
1: वो लेखिका और कोई नहीं, ये तुम्हारे सामने खड़ी है जो चाय लेके आई है।
0: ये भला कैसे हो सकता है?
2: नमस्कार भाई साहब।
0: नमस्कार, क्या आप ही बेबी हल्दर हैं?
1: हाँ रमन, यही है वो महान लेखिका।
0: अरे लेकिन मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, पर ये यहाँ कैसे और ये काम?
1: हर कोई यही सवाल पूछेगा अब।
0: भाई प्रबोध, सच पूछो तो मैं आज धन्य हो गया।
3: साथियों, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। उस दिन प्रबोध जी के ड्राइंग रूम में महान लेखिका बेबी हल्दार से मुलाकात करके रमन मानो अवाक रह गए थे। बेबी हल्दार अब साहित्य जगत की जानी पहचानी हस्ती हैं। आज बेबी हल्दार का नाम लेखन के क्षेत्र में एक

0: पहचान बन चुका है।
1: बीबी का बचपन बहुत ही दारुण और दुखमय माहौल में बीता। पिता घर पर कभी पैसे देते कभी नहीं देते। घर में निरंतर तंगी और कलह के कारण मां घर छोड़कर चली गई। कुछ दिनों बाद पिता ने दूसरा विवाह किया और फिर तीसरा। नौकरी से रिटायर होने पर उसके पिता दुर्गापुर में आकर रहने लगे, जो पश्चिम बंगाल में है।
0: मुसीबतों ने यहां भी बेबी का पीछा नहीं छोड़ा। वो अपने से दुगनी उम्र के एक आदमी के साथ ब्याह दी गई और सातवीं कक्षा में ही उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कुछ वर्षों के बाद नियति ने एक और क्रूर करवट ली, जिसके कारण उसे अपना घर भी छोड़ना पड़ा। घर छोड़ने का कारण था पति का दुर्व्यवहार। एक दिन की बात है, पूजा का दिन था, रात के 2 बजे थे। पड़ोस में पूजा थी, बेबी भी पूजा का थाल तैयार किए बैठी थी। बस इंतजार था पति के घर आने का।
2: अरे आ गए आप, इतनी देर कैसे हो गई?
3: क्यों, तुमसे पूछ कर जाना होगा कहीं?
2: नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। खाना तैयार है, आप खाना खा लीजिए। अब वो आज मेरा उपवास है, पड़ोस में पूजा चल रही है, अब आप कहें तो मैं वहां हो आऊं।
3: कितनी देर लगेगी?
2: बस पूजा खत्म होते ही चली आऊंगी।
3: जल्दी आ जाना।
2: जी।
1: उस दिन जो पूजा में हुआ, उसके बाद बेबी ने निर्णय लिया कि वो कभी अपने पति के घर वापस नहीं जाएगी। हुआ यूं कि उस दिन बेबी के पति ने सबके सामने बेबी की खूब पिटाई की। बात क्या थी ये तो न बेबी को पता था, न ही पूजा में उपस्थित लोगों को, और न ही शायद बेबी के पति को।

रोज रोज की जिल्लत झेलने से अच्छा है मैं हमेशा के लिए घर छोड़ दूंगी।

और फिर अपने तीनों बच्चों को लेकर दुर्गापुर के रेलवे स्टेशन से उसने गाड़ी पकड़ी और ढेरों प्रश्न मन में लिए वो चल पड़ी एक ऐसे आशियाने की तलाश में जहां उसके लिए सुख के कुछ पल हों और उसके बच्चों के लिए सुनहरा भविष्य।

सब कुछ छोड़कर जा तो रही हूँ, पर क्या होगा आगे? इन बच्चों को

इसे पाल भी सकूंगी या नहीं? क्या कोई काम मिल पाएगा मुझे? क्या मेरे बच्चे कभी स्कूल जा पाएंगे?

0: और फिर बेबी जुट गई इन्हीं प्रश्नों के उत्तर की तलाश में। कुछ दिन वो फरीदाबाद रही और फिर गुड़गांव। घरों में काम करके कुछ पैसे तो कमा लेती थी, जिससे उसके बच्चों का पेट तो भर जाता था, पर उसकी आंखें अक्सर खिलखिलाते हंसते बच्चों को जब बस्ता टांगकर स्कूल जाते हुए देखती तो एक आह उसके मन से निकलती। क्या उसके बच्चे भी कभी स्कूल जा पाएंगे?
1: समय का पहिया अबाध गति से चलता गया और एक दिन उसने श्री प्रबोध कुमार के घर पर नौकरी कर ली। इनको हम तातुश के नाम से जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद के नाती प्रबोध कुमार, जो आज एक वरिष्ठ कथाकार हैं। जिंदगी के इस मुकाम पर बेबी हलदार के जीवन ने एक खुशनुमा मोड़ पाया। इस घर में उसके सपनों को, मुरझाते अरमानों को मानो एक नई मंजिल मिली। एक दिन की बात है, बेबी प्रबोध जी के घर पर काम कर रही थी।

हाँ, अब तो काफी काम निपटा लिया है। अब जरा लाइब्रेरी साफ कर लो। अरे वाह!

0: हाँ, अब तो काफी काम निपटा लिया है। अब जरा लाइब्रेरी साफ कर लो। अरे वाह, कितनी अच्छी किताबें हैं। ऐसा लगता है मानो ये किताबें कुछ कहना चाहती हैं मुझसे। अच्छा, अब जरा इस किताब को खोलकर देखूं।
1: बेबी, क्या देख रही हो बेबी?
0: जी, मैं।
1: हाँ हाँ, कहो ना, क्या देख रही हो इस किताब में?
0: जी, मैं कुछ किताबें देख रही थी। मुझे ये बड़ी अच्छी लगती हैं।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्या तुम्हें पढ़ना लिखना आता है?
0: 7वीं तक पढ़ी हूँ बाबूजी।
1: अच्छा, फिर ये बताओ कि तुम किसी लेखक का नाम जानती हो?
0: हाँ, रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरद चंद्र, सतेंद्रनाथ दत्त।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। तुम्हें तो बड़े बड़े लेखकों के नाम याद हैं। अच्छा चलो, एक काम करो। ये किताब लो।
0: जी।
1: और आज इसे पढ़कर दिखाओ।
0: आमार मे बेला तस्लीम नसरीन।
1: वाह बेबी, तुम्हें पढ़ने का शौक है?
0: शौक होने से क्या होता है बाबूजी, लिखना पढ़ना तो अब होने से रहा।
1: क्यों होगा, क्यों नहीं? अब मुझे देखो, अभी तक पढ़ता हूं। अरे भाई, जब मैं पढ़ सकता हूं तो तुम क्यों नहीं? अच्छा चलो, तुम एक काम करो।
0: जी।
1: इस किताब को घर ले जाओ।
0: जी।
1: हाँ, और जब भी समय मिले तो इसे पढ़ना जरूर।
0: जी। बहुत अच्छा बाबूजी।

साथियों, वो दिन बेबी हल्दार के जीवन का एक ऐसा दिन था जहां से उसने फिर पलट कर कभी पीछे नहीं देखा। वो किताब लेकर घर चली गई और उसमें से रोज एक एक दो दो पन्ने पढ़ने लगी। आधी रात को धुंधली रोशनी में उसे इस किताब के पन्नों में कभी कभी अपनी जिंदगी की झलक भी दिखाई देती।

0: बेबी
1: जी,
0: तुम जो किताब ले गई थी उसे ठीक से पढ़ तो रही हो?
1: जी, मैं उसे रोजाना पढ़ती हूँ।
0: अच्छा, तो ठीक है, आज मैं तुम्हें एक चीज दे रहा हूँ, इसका इस्तेमाल करना, समझना कि ये मेरा ही काम है। ये लो ये कॉपी, और ये है पेन
1: जी।
0: अब तुम इसमें कुछ लिखना शुरू करो।
1: हाँ जी जी, मैं क्या लिखूं?
0: तुम ऐसा करो, हाँ, तुम अपने जीवन की कहानी लिखने की कोशिश करो। मतलब होश संभालने से लेकर अब तक की जिंदगी की जो भी बातें तुम्हें याद आए वो सब इस कॉपी में हर रोज थोड़ा थोड़ा लिखना।
1: लेकिन क्या मैं लिख सकूंगी?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जरूर लिख सकोगी बेबी। रात के अंधेरे में एक काम वाली के हाथ में किताब देखकर आसपास के लोग हैरान होते और तरह तरह की बातें करते।
2: ये क्या पढ़ेगी, क्या लिखेगी है?
3: अरे ये क्या कहेगी, किताब पढ़ गया।

पर किताबों को वो अपने से दूर नहीं होने देती। ऐसा उसका प्रण था। बेबी जो कुछ भी लिखती तातोश उसे फोटोकॉपी करवाकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास कोलकाता भेजते रहते। जिस जिसने वो पन्ने पढ़े उसे वो चमत्कार सा लगा।

0: बेबी
1: जी
0: इधर आओ, ये लो तुम्हारी चिट्ठी आई है।
1: मुझे चिट्ठी कौन लिखेगा तातुश? मुझे चिट्ठी लिखने वाला कोई नहीं है।
0: अरे भाई चिट्ठी तो तुम्हारा ही नाम है, पर हाँ लिखी मेरे एक दोस्त ने है।
1: अच्छा,
0: दरअसल तुम्हारे लिखे हुए कुछ पन्ने भेजे थे मैंने उसे। देखें क्या लिखा है उसने, पढ़ो।
1: आप ही पढ़ दीजिए ना।
0: मैं?
1: हाँ।
0: अच्छा ठीक है, लिखते हैं। प्रिय बेबी, मैं बता नहीं सकता कि तुम्हारी डायरी पढ़कर मुझे कितना अच्छा लगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इतना अच्छा लिखना तुमने कैसे सीखा। तुम्हारा लेखन उत्कृष्ट है। अरे वाह, मुबारक हो बीबी। आगे लिखते हैं, मैं बहुत लज्जित हूँ कि तुम्हें बांग्ला में नहीं लिख सकता। मैं बांग्ला पढ़ सकता हूँ पर लिख नहीं सकता। इस उम्र में भी तुम्हें चिट्ठी लिखने के लिए बांग्ला लिपि सीखने की इच्छा तो होती है पर जरा मुश्किल है। तुम्हारी कहानी जानने की मेरी बहुत इच्छा है। यहां मेरे जिन जिन बंधु बांधवों ने तुम्हारी डायरी पढ़ी है वो सब उसे लेखन का चमत्कार मानते हैं। मेरे एक बंधु ने कहा है कि वो तुम्हारी रचना को किसी पत्रिका में छपवाने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी कहानी को किसी एक मोड़ तक पहुंचाना होगा। आशा करता हूं कि तुम कभी लिखना नहीं छोड़ोगी और ये बात किसी भी दिन नहीं भूलना कि भगवान ने इस पृथ्वी पर तुम्हें लिखने के लिए ही भेजा है।
1: ये सब क्या मेरे लिए लिखा है?
0: हाँ बेबी, मुबारक हो भाई। अगर बेबी तुम्हारा नाम है तो ये सब तुम्हारे लिए ही लिखा है उन्होंने।
1: मैंने ऐसा क्या लिखा जो इन लोगों को इतना अच्छा लगा? उसमें अच्छा लगने की क्या बात है?
0: अरे भाई कुछ तो होगा। देखो अब तुम इस बारे में ज्यादा ना सोचो, तुम बस अपना काम किए जाओ, बस लिखो और पढ़ो।
2: इस तरह बेबी के लेखन का सिलसिला चलता रहा। कोई उसके लेखन को चमत्कार कहता तो कोई उसकी तुलना चर्चित एन फ्रैंक की डायरी से करता। इस तरह सभी बेबी का हौसला बढ़ाते रहते और बेबी अपनी दर्द भरी दास्तान कागज पर उतारती रहती। शब्दों के जरिए एक बार फिर वो अपने अतीत में पहुंची। बीते दिनों की एक एक याद से वो सिहर उठती। उसकी मां का उन्हें छोड़कर चले जाना, पिता की तीन तीन शादियां, 12 वर्ष की आयु में उसकी शादी और पति का दुर्व्यवहार, पर फिर भी वो लिखती रही, लिखती रही।
3: कितनी देर लगेगी?
1: बस पूजा खत्म होते ही चली आऊंगी।
3: जल्दी आ जाना।
1: जी मामा, हम कहाँ जा रहे हैं?
4: याद आते हैं वो दिन, लोगों का तिरस्कार, बच्चों को लेकर एक शरण की खोज में भटकना, वो काम का मिलना कभी नहीं मिलना, सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल

धीरे धीरे उसने अक्षरों से आरंभ किया। अक्षर वाक्य बने और वाक्य बने

0: बेबी
1: जी,
0: चाय तैयार है क्या?
1: जी अभी लाए।
0: बेबी देखो तो दरवाजे पर कौन है?
2: जी देखती हूँ।
1: अब
2: ये कोई पार्सल लगता है।
0: दिखाओ तो। अरे इस पर तो तुम्हारा नाम लिखा है।
3: देखे तो जरा खोल कर। अरे वाह,
0: देखो तो सही बेबी, क्या है ये?
2: मेरा नाम?
0: हाँ।
2: अरे ये तो मेरा लिखा हुआ ही है, मेरी किताब।
0: मुबारक हो बेबी,
3: बहुत बहुत मुबारक हो।
2: बेबी हल्दार की किताब? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। बच्चों को दिखाती हूँ।
0: जरूर,
3: जल्दी से जाओ
0: और बच्चों को दिखाओ।

0: बच्चों बताओ तो ये क्या लिखा है?
1: माँ तुम तो जानती हो पढ़ना, हमसे क्यों पूछ रही हो?
0: अरे देख तो जरा पढ़, बेबी हल्दार।
1: माँ तुम्हारा नाम किताब में, माँ का नाम किताब में, माँ ये तो कमाल है।

0: जी हाँ साथियों, ये थी बेबी हल्दार की पहली किताब आलो आंधारी, जिसने साहित्य जगत में तहलका मचा दिया।
1: আমি শ্রীমতী বেবি হালদারের লেখা উপন্যাস পড়েছি। এই উপন্যাসে নারী জীবনের সম্পূর্ণ দুঃখ পীড়া তুলে ধরেছে। আমি এই উপন্যাস পড়ে সত্যি উপকৃত হয়েছি।
0: আলো আন্ধারি কা অর্থ হ্যায় অন্ধেরে মে উজালা। সচ, বেবসি সে জুঝতি আপনা ঘর বার ছোড়কর एक नए आशियाने की तलाश में दुर्गापुर से गुड़गांव तक की यात्रा करने वाली बेबी हल्दार के जीवन के अंधेरों में उजाला ही तो था। आज भी उनका लेखन जारी है, अनवरत जारी है।
2: अंधेरे का उजाला, बेबी हल्दार। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। अकादमिक समन्वय शोध एवं आलेख परामर्श डॉक्टर अनुभूति यादव, आलेख जैबुनिसा परवेज, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, नीरज शर्मा, राजश्री त्रिवेदी, बाबला कोचर मंगत राम और हन्ना, ध्वनियांकन अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा ध्वनि संपादन निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंधेरे का उजाला। तो श्रोताओ, इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन चलते चलते आपको एक विशेष सूचना दे दें या आपको याद दिला दें।
3: वो सूचना है, आप इस सप्ताह प्रतिदिन सुन रहे हैं कि एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर CIET और NCERT को जरूर फॉलो करें।
2: तो अब अजीत
3: और विमलेश को तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु, चेतना और मंजू कुमारी के साथ आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 10 बजे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती की मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए हम अपने श्रोताओं से करेंगे बातें। देश के कोने कोने से हेलो फरमाइश कार्यक्रम में श्रोताओं के कॉल्स आते हैं और इस तरह से हम अपने श्रोताओं से जुड़ते हैं, उनके बारे में, उनके इलाके के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और विविध भारती के बारे में उनकी क्या राय है इसकी भी पड़ताल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेलो फरमाइश, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: संत सीताराम नगर भोपाल से बोल रहा हूँ सर।
0: जी क्या नाम है आपका?
1: सर मैं बाबूलाल सेन बोल रहा हूँ सर।
0: बाबूलाल जी क्या करते हैं भोपाल में?
1: जी सैलून की दुकान है सर।
0: इस साल भोपाल में बारिश किस तरह की हुई है?
1: बारिश तो बहुत अच्छी हुई साहब, बढ़िया एकदम टनाटन और अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, ना बाढ़ को प्रकोप हुआ ज्यादा, कुछ भी नहीं है, नाले तूफान ज्यादा उफान पे भी नहीं आया।
0: अच्छा, और भदभदा के गेट कितनी बार खुले इस बार?
1: दो तीन बार खुले सर।
0: मतलब बारिश बहुत अच्छी हुई?
1: जी जी, लेवल से पानी हुआ है, गेट तो अंदाज से खुले सर।
0: और आप कहाँ कहाँ पिकनिक मनाने गए इस बारिश में?
1: इस बारिश में कहीं भी नहीं गए सर।
0: अच्छा, काम में बिजी रहे?
1: जी जी।
0: अच्छा बताइए, कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: मूवी है तुमसे अच्छा कौन है,
0: गाने की बोल।
1: आप है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो।
0: क्या बात है, चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो, फरमाइश, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी यूनुस खान जी, उत्तर प्रदेश जिला शामली से गुलजार बात कर रहा हूँ।
0: जी कैसे हैं गुलजार साहब?
1: जी मैं बहुत अच्छा हूँ जी, आप कैसे हैं यूनुस खान सर?
0: बस बढ़िया हैं, आप लोगों से बातें कर रहे हैं। बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आज मैं गाना सुनना चाहूंगा ना जैके पार फिल्म का, आप गाने के बोल रहे थे कौन दिशा में लेके चला रहे बटुआ।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की, रविंद्र जैन का संगीत, उन्हीं का गाना है।
1: हाँ जी।
0: और ये फिल्म कितनी बार देखी है आपने?
1: ये फिल्म मैंने 10 बार देखी है।
0: अच्छा, और गुंजा और चंदन की प्रेम कहानी बहुत अच्छी लगती है आपको?
1: हाँ जी, गुंजा का रोल बहुत अच्छा लगता है, गुंजा और चंदन का रोल। जब आखिरी माँ आ जाती है ना, आखिरी माँ का गुंजा का निकाह चंदन से हो जाता है, गुंजा की शादी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फरमाइश पर, आपको सुनवाते हैं नदिया के पार फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: गिराम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर जी।
0: कैसे हैं परमार जी?
1: बहुत अच्छे हैं सर जी। पहली बार आपसे ही बात हुई थी, आज पीछे आपसे बात करने का मौका मिला, मेरा बड़ा सौभाग्य है सर जी।
0: अरे वाह, हमें भी अच्छा लग रहा है। कब हुई थी पिछली बार बात हमारी?
1: सर 1.5 साल करीब हो गए सर।
0: अरे बाप रे, इतना ज्यादा वक्त हो गया।
1: जी जी।
0: अच्छा बताइए, सीहोर की क्या हालचाल है, कितनी बारिश हो रही है?
1: जी सर, हमारे इधर तो अच्छी बारिश हो चुकी है, 33 इंच बारिश हुई है, पर के 41 हुई थी पिछले साल, और अभी मौसम धूप खिली हुई है सर। बरसात का मौसम होता है लेकिन बरसात अभी गिरी नहीं है सर हमारे इधर।
0: पूरे देश में सीहोर अपने शानदार गेहूं के लिए जाना जाता है, कौन कौन सी गेहूं की किस्में होती है वहाँ पर?
1: जी सर, हमारे इधर है ना 1544 लोकबंद और 8713, और जो सर्वाधिक गेहूँ रहते हैं ना सर, उसमें मैं पूरे भारत में सीहोर मंडी का गेहूँ और हमारे क्षेत्र का गेहूँ सर।
0: बहुत ज्यादा तादाद में उधर गेहूँ होता है?
1: जी हाँ सर, बहुत ज्यादा तादाद में गेहूँ होता है, और खाने की किस्म बहुत जोरदार रहती है हमारे क्षेत्र में सर।
0: अच्छा
1: जी,
0: मतलब जरा विस्तार से बताएं
1: सर। जो लोकबंद गेहूं है या 1544 है, इनकी रोटी बहुत अच्छी आती है सर, और जो सरबती गेहूं जिसमें पूरे भारत में हमारे क्षेत्र का नाम चलता है, उसकी रोटी बहुत मुलायम रहती है सर, सुबह से शाम तक कड़क नहीं होती।
0: अच्छा क्या बात है, आपने देखिए कितने बारीकी से हमें ये फर्क बताया है। कितनी मेहनत गेहूं के खेतों में सीहोर वाले लोग करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत का काम है खेतों में काम करना, है ना?
1: जी हाँ सर, मेहनत का तो काम है, हम भी किसान है सर, किसानी करते हैं
0: जी। गेहूं के अलावा और क्या क्या होता है आपके खेतों में?
1: जी सर, अभी हमने बरसात की फसल में मक्का और सोयाबीन लगाए हैं सर जी, और 1 महीने बाद हमारी फसल आ जाएगी सर जी।
0: अच्छा, सोयाबीन मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है, क्या जमीन पर इसका कुछ असर पड़ता है सोयाबीन उगाने का?
1: नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, जमीन में ज्यादा मतलब कमजोर जमीन नहीं होती सोयाबीन से सर। मक्का का ज्यादातर लगातार बोएंगे तो कमजोर जमीन होती, बाकी सोयाबीन से जमीन कमजोर नहीं होती सर।
0: तो आप अदला बदली करके फसलें उगाते रहते हैं?
1: जी हाँ सर, हम इधर से इधर पलटी कर देते हैं, तो फसल उसमें अच्छी भी आती है और पैदावार भी बढ़ती है सर।
0: और खाद का इस्तेमाल कितना होता है, उर्वरक का इस्तेमाल?
1: जी सर, हमारे पास कुछ मवेशियाँ भी हैं सर, तो हम पहले तो गोबर का खाद इस्तेमाल करते हैं, जब हमको कम पड़ता है तो हम रासायनिक खाद का भी इस्तेमाल करते हैं जो सोसाइटी से हमें मिलता है सर।
0: और रेडियो आपके जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, खासतौर पर विविध भारती?
1: जी सर, विविध भारती तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ सर जी, मेरी 8 साल उम्र थी जब से मैं सुन रहा हूँ।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए आज किस गाने की फरमाइश है?
1: सर आप सुना दीजिए, फिल्म का नाम है आदमी खिलौना है, और गाने के बोल हैं मत कर इतना गुरूर सूरत पे ए हसीना, ये वाला किस्म है सर जी।
0: आपने कहा और हमने सुनाया आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी, मैं सुशील कुमार बोल रहा सर।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: गांव श्यामपुर, जिला यमुनानगर, तहसील बिलासपुर।
0: अच्छा अच्छा, क्या हालचाल है आपके, बताइए।
1: ठीक है सर, बहुत बढ़िया जी। आज पहली बार मेरी कॉल लगी है सर।
0: अच्छा, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आज पहली बार आपकी कॉल लगी है।
1: हाँ जी।
0: अब बताइए कि विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं?
1: मेरे को सारे प्रोग्राम बढ़िया लगते हैं जी।
0: अच्छा, आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मेरे को एक गीत की फरमाइश है जी, वो है जी एक प्यार का नगमा है जी।
0: क्या बात है, शोर फिल्म का ये गाना सुनना चाहते हैं। आपकी फरमाइश पूरी करते हैं, आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश,
1: यूनुस खान सर को प्यार भरी नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: सर सतीश शर्मा बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से, आपका पुराना श्रोता।
0: जी सतीश जी, कैसे हैं आप?
1: बस सर, पहले भी आपसे काफी बार बात हुई है।
0: अच्छा बताइए, आज किस गाने की फरमाइश लेकर आए हैं आप?
1: सर गाना है आज नागिन फिल्म से।
0: कौन सी वाली नागिन?
1: ये सर सुनील दत्त वाली।
0: अच्छा,
1: उसमें सर मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है।
0: क्या बात है, ये जो नागिन फिल्म है, इस फिल्म को देखने में लोग डरते थे और सीटों के नीचे नजर डाला करते थे कि कहीं सांप तो नहीं आ गया।
1: हाँ जी सर, जब इसकी बीन वगैरह बजती थी ना इसमें,
0: हाँ,
1: तो डर जाते थे हम।
0: कौन सी टॉकीज में देखी थी ये फिल्म?
1: टॉकीज में तो सर मैंने टीवी में ही देखी है ये।
0: अच्छा अच्छा, विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम आपको बहुत अच्छे लगते हैं?
1: विविध भारती का सर एक तो 12 बजे आता है जिसमें आप गाने सुनाते हैं सदाबहार नगमे में, और 1 बजे से आता है आपका वो भी सुनता हूँ, और हेलो फरमाइश तो काफी समय से मैं कोशिश कर रहा था, बहुत समय बाद कॉल लगी है।
0: देखिए पूरे देश के श्रोता लगातार कॉल करते हैं तो ये होता है कि बहुत मुश्किल से कॉल लगता है।
1: और सर आप तो हमारे फेवरेट आरजे हैं,
0: बहुत बहुत
1: बात करने के लिए तो बहुत दिन से कोशिश कर रहा था मैं। काफी समय पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी, जैसे 2-3 बार हो चुकी है आपसे पहले, शायद आपको याद हो।
0: जी जी जी, तो बताइए कि इस समय विविध भारती के इन दिनों में सुने कौन से कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा यादगार लगे हैं?
1: एक तो आपका उजाले उनकी याद हो के आता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है, और सखी सहेली वगैरह ये भी सुनते हैं हम, और दोपहर में एक बजे से आता है जो आप शब्द नहीं देते हैं हमें, उसमें भी कई बार मैं भाग लेता हूँ।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा, आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: ग्राम सुराना जिला रतलाम से बोल रहा हूँ, शेख हैदर खान।
0: हाँ जी, कैसे हैं हैदर जी आप?
1: बस बढ़िया है, खैरियत में है सर एकदम।
0: बिल्कुल दुआएं, बताइए।
1: फिल्म का नाम है धरती।
0: अच्छा,
1: ये रफी साहब की आवाज में गीत है। खुदा भी जब जमी पर आसमां से देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा।
0: बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की है भाई आपने। जी बताइए कि कैसे हैं आप और कैसा है आपका शहर?
1: सर रतलाम से 12 किलोमीटर दूर मेरा गांव है और हम तो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं सर।
0: जी जी।
1: तो अभी सोयाबीन की फसल मतलब लगभग कटने वाली है, जिसके बाद गेहूं और लहसुन वगैरह की खेती करेंगे सर, मटर वगैरह की।
0: जी जी जी।
1: और सर आकाशवाणी से मैं 1980 से जुड़ा हुआ हूँ।
0: बहुत खुशी की बात है। और लगातार विविध भारती सुनते हैं आप?
1: विविध भारती तो सर मतलब मेरे पास रेडियो है, दो रेडियो रहते हैं, मेरे खेत पे भी रहता है और घर पे भी चलता ही रहता है।
0: अच्छा, बहुत ही बढ़िया। हाँ। मुझे ये बताइए कि नए गानों की बजाय पुराने गाने लोगों को क्यों पसंद आते हैं?
1: सर नए गानों में जो म्यूजिक है वो बिल्कुल मतलब थोड़ा अलग ढंग का है, और पहले के जो गीतकार थे, शायर थे, गायक कलाकार थे, उनका क्या कहना है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए पूरी करते हैं इस बातचीत को और आपको सुनवाते हैं धरती फिल्म का ये गाना आपके लिए।

0: हेलो फरमाइश
1: मनोज भाई, ठीक हो आप? सर
0: जी, आप कौन बोल रहे हैं?
1: बिलाल अहमद कश्मीर से बोल रहा हूँ।
0: बिलाल अहमद साहब, कश्मीर में कहाँ हैं आप?
1: हम डिस्ट्रिक्ट बड़गांव है, गाँव है गोंडीपना।
0: अच्छा, उस इलाके की क्या खासियत है?
1: यहाँ सर ये सेबू की दरख्त है।
0: अच्छा,
1: बहुत
0: और वादी कश्मीर में विविध भारती किस तरह सुनाई देती है और कितना ज्यादा लोग उसे पसंद करते हैं?
1: सर हम बहुत पसंद करते हैं, सुबह से शाम तक हम आपके प्रोग्राम सुनते हैं।
0: अच्छा, मुझे ये बताएं कि कश्मीर से बाहर के लोग जब कश्मीर घूमने आते हैं तो वो गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, इन सब जगहों पर जाते हैं। कश्मीर के लोग कहाँ घूमने जाते हैं?
1: कश्मीर के लोग बाहर भी जाते हैं, बाहर कंट्री में बहुत जगहों पर जाते हैं।
0: नहीं, मेरा मकसद था कश्मीर के लोग कश्मीर में कहाँ घूमने जाते हैं?
1: यहाँ भी जाते हैं, बहुत जगहों पर जाते हैं।
0: अच्छा, अभी आपके गांव में किस तरह का मौसम है?
1: अभी तो मौसम अच्छा है, अभी मौसम सर्मा आने वाला है तो उसमें थोड़ा बहुत मुश्किल होते हैं, तो अभी तो ठीक मौसम है अभी।
0: जी, वैसे इन दिनों में टूरिस्ट किस तरह से आ रहे हैं, कितनी तादाद है?
1: बहुत टूरिस्ट अभी भी आते हैं, दौदपत्री है यहाँ हमारा वो इलाका है, वहाँ में नजदीक है इस गाँव से, बहुत टूरिस्ट आते हैं, सुबह से शाम तक आते हैं। अभी गुलमर्ग भी आते हैं, सोनमर्ग, वैरनाग।
0: जी, मौसम की पहली बर्फबारी हो गई हमने सुना है?
1: ना, अभी बर्फबारी नहीं हुई, थोड़ा मौसम आलूदा रहते हैं लेकिन बहुत धूप है कल से।
0: जी जी जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: आज हम यूनुस भाई वो गाना है ना, दिल दिया है जान दिया ए वतन तेरे लिए,
0: कर्मा फिल्म का ये गाना है। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, सुभाष घई की ये फिल्म थी। आपकी नजर वादी कश्मीर में ये

0: हेलो फरमाइश।
1: गोपाल बोल रहा हूँ मैं, ग्राम ककवासा से।
0: अच्छा, ये ककवासा कहाँ पड़ा भाई?
1: ये ककवासा अपना जी है ना, ये भोपाल के पास में है जी, मान लीजिए।
0: अच्छा, कौन सी वाली रोड पर?
1: जी अपना है ना वो जामनेर वाली रोड है ना, यहाँ पर ये पास में पड़ता है अपना गाँव।
0: अच्छा, तो बताइए आपके गाँव की क्या हालत है?
1: गांव की हालत बढ़िया है, बारिश हुई थी अभी 2-3 दिन बाद, अभी तो क्योंकि फसल भी आने वाली है, मक्का की फसल लगा रखी है।
0: तो बारिश तो 1 महीना लेट चल रही है हमने सुनो।
1: हाँ लेट ही चल रही है अभी।
0: अच्छा, बाकी गांव के हालचाल कहाँ है?
1: गांव की हालचाल तो बढ़िया है जी, मान लीजिए अभी फसल कटेगी, नवरात्रि भी आने वाली है।
0: हाँ, तो तैयारियां चल रही?
1: तैयारी करेंगे, अभी तो नहीं चल रही है जी, मान लीजिए।
0: अच्छा
1: सर जी, पहली बार बात हो रही है, यूनुस खान जी बोल रहे हैं ना?
0: हाँ यूनुस खान बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें भी। अच्छा बताइए, किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं आप?
1: सिर्फ तुम फिल्म का सुनना है, वो पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए, मैं क्या करूं जी वाला, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में।
0: क्या बात है, आपको तो सब याद है, बहुत रेडियो सुनते हैं आप?
1: हाँ सुनते हैं हम तो पूरे कार्यक्रम, जो बहुत सालों से सुनता है, पहले आता था वो सुपर हिट आता था सदाबहार नग में, मन चाहे गीत भी आते थे पहले 1:30 बजे से, वो बहुत सालों का रेडियो आता था, तो वो रेडियो पे सुनते थे पहले तो।
0: और अभी?
1: अभी मोबाइल ऐप पे चल रहा है अभी जी, मान लीजिए।
0: क्या बात है, मोबाइल ऐप पे बहुत ही अच्छा रहता है, एक बटन दबाओ और रेडियो चालू हो गया
1: जी। सर जी विविध भारती अपरा तो चलता ही रहता है जी, मान लीजिए सभी कार्यक्रम आपके चलते ही रहते हैं।
0: बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, बुलढाणा महाराष्ट्र से नारायण हाजी बोल रहा हूँ सर।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: एकदम बहुत बढ़िया है सर, आप सुनाओ, आप कैसे हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। बताइए कि आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं?
1: याराना फिल्म का गीत है सर, तेरे जैसा यार कहाँ, ये गीत सुना है सर आज।
0: अपने किस दोस्त की नजर कर रहे हैं?
1: मेरे तो दोस्त वैसे तो बहुत है, सब छोटा लोग मेरे दोस्ती है सर। किसका?
0: अच्छा,
1: नाम नहीं।
0: ऐसा, सबसे पुराना दोस्त कौन है आपका, बचपन का दोस्त?
1: बचपन का दोस्त तो अभी दवाखाने में एडमिट है सर, एक्सीडेंट हो गया उनका।
0: अरे अरे अरे, तो आपको तो बहुत फिक्र होगी उनकी।
1: सर अभी उनको भी फोन लगा रहा था, लेकिन हेलो फरमाइश में फोन लगा, बहुत सालों के बाद फोन लगा मेरा।
0: बहुत साल, मतलब कितने साल हो गए?
1: मैं कम से कम 1995 से रेडियो सुन रहा
0: जी,
1: तब से फोन लगा, लेकिन लगा भी नहीं, आज तक नहीं फोन लगा मैंने।
0: आज पहली बार फोन लगाई, ये तो बहुत खुशी की बात है फिर।
1: हाँ सर, बहुत खुशी की बात, इतनी खुशी हो गई कि मैंने फिल्म का नाम भी नहीं बता सकता था, लेकिन वैसे भी याद आ गया इसलिए बोल दिया।
0: क्या बढ़िया बात है, अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपका जो दोस्त बीमार है, जिसका एक्सीडेंट हो गया है, हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सुनिए याराना फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं सर जी, मनोज नामदेव।
0: मनोज जी कैसे हैं आप?
1: बस सर जी बहुत बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है भगवान कृपा से, मैं बहुत बढ़िया हूँ सर।
0: अच्छा अब बताइए आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं?
1: फिल्म का नाम रहेगा विजयपा, तो उसमें गाना है राहों में उनसे मुलाकात।
0: वाह ये तो अजय देवगन का गाना है।
1: बिल्कुल सर।
0: और तब्बू का गाना है।
1: हाँ सर।
0: कुछ याद आता है ये फिल्म कब कहाँ देखी थी?
1: सर जी मैंने सबसे पहले फिल्म टॉकीज में देखी थी 2018 में।
0: अरे बाप रे ये सब भी याद है आपको?
1: हाँ सर बिल्कुल। और एक साल से सर मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि सर आपसे मेरी बात हो, आज जाके मेरी उम्मीद पूरी हुई है सर।
0: बिल्कुल बात हुई और हमें भी बहुत अच्छा लगा। पूरी करते हैं बातचीत, आपको सुनवाते हैं विजयपथ फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: जी संतोष कुमार राव बात कर रहा था सर, उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: अच्छा, बताइए कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा सर, आपके प्रोग्राम से लगातार जुड़ाव रखते हैं, मन चाहे प्रोग्राम से इतनी शानदार और मनमोहक प्रस्तुतियां देते हैं सर, बेहद ही लाजवाब प्रोग्राम होता है मन चाहे गीत और विविध भारती के कार्यक्रम जितने भी आते हैं सर, बहुत ही प्यारी प्रस्तुतियों के साथ आपका प्रसारण आता है सर।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। और उमरिया में किस चीज की खदानें हैं?
1: सर यहाँ पे कोयला खदाने हैं सर यहाँ पे, और बहुत ही प्यारा सा मौसम है इस समय, और कोयला की उत्खनन हमेशा यहाँ पे जारी रहती है सर।
0: अच्छा, वहाँ विविध भारती किस तरह सुनाई देता है?
1: डीटीएच के माध्यम से प्रसारण आता है, न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के माध्यम से प्रसारण आता है, FM बैंड 102 MHz पर आकाशवाणी शेड्यूल के माध्यम से प्रसारण आता है सर। बहुत ही अच्छी उन्नति तकनीकों के साथ आपका प्रसारण स्पष्ट रूप से पहुँच पाता है सर।
0: अच्छा, और बहुत ही प्यारा सुंदर प्राकृतिक सुषमा से भरपूर इलाका है आपका?
1: जी बिल्कुल सर, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है सर, हरियालियाँ चारों तरफ है, और आपका प्रसारण बहुत ही सुमधुर आवाज के साथ पहुँचता है और पूरे परिवार का आनंद उठाते हैं हम लोग राष्ट्रीय सेवा विविध भारती देश की सुरीली धड़कन के माध्यम से।
0: वाह, आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: आज की टू मूवी का गाना है चाहूं मैं आना।
0: अच्छा लगा आपसे बात करके, पूरी करते हैं आपकी फरमाइश और आपको उमरिया में सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: का आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल सोमवार को रिकॉर्ड करते हैं दिन में 11 बजे से। दो टेलीफोन नंबर है हमारे 0222867 0288 यानी 0222867 0288 और 0224002466 यानी 0224002462। जिन श्रोताओं के कॉल्स आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं उनसे हम विनम्र निवेदन ये करेंगे कि वो कृपया हमें आगामी दो माह तक फोन न करें ताकि हम अपने नए श्रोताओं को मौका दे सकें। चलने से पहले आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थीं किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी और मैं आपका दोस्त यूनुस खान। इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। 11 बजे हैं, लीजिए सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं चंदन दास की गायी चुनिंदा गजलें।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील विल हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत के अंतर्गत चंदन दास की गाई चुनिंदा गजलें।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
4: सुगम संगीत अब यही संपन्न होता है। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। 11:30 हुए हैं और वक्त हो चला है फिल्म संगीत का। शुरुआती नगमा आपको सुनवा रहे हैं आराधना फिल्म से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, सचिन देव बर्मन का संगीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में कारवां फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर और रफी साहब के युगल स्वर में, शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना

किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस दिए, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी की बोल, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें और फिल्म का नाम है धरती कहे पुकार के।

अगला गीत आप सुन रहे हैं कसमे वादे फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार गुलशन, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

0: विश्व गायक एसपी बालसुब्रमण्यम को याद करते हुए उन्हीं के गीत सुनाएं कार्यक्रम यादों की महफिल में।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती

आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती। राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए, हम लेकर आ गए हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। आप सभी विविध भारती सुनने वालों को पूजा नारायणिया का प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सुरीला।

कुछ चेहरे सिर्फ पर्दे पर नजर नहीं आते, पर्दे पर आते ही अपना एक अलग माहौल बना देते हैं। फिरोज खान भी कुछ ऐसे ही कलाकार थे। उनका अंदाज, उनका पहनावा, उनका आत्मविश्वास और उनकी वो खास स्क्रीन प्रेजेंस, जैसे कैमरा उन पर ठहरना चाहता हो। उन्हें देखकर शायद उस दौर के दर्शक यही सोचते होंगे, ये शख्स सिर्फ किरदार निभाने नहीं आया है, अपना अंदाज छोड़ने आया है। अभिनेता के रूप में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई, तो निर्देशक और निर्माता के रूप में भी उन्होंने कई यादगार फिल्में दी हैं हम सभी को। आप बताइए उनके बारे में, आपने उन्हें जब पर्दे पर देखा तो आपने क्या महसूस किया?

तो श्रोताओं, आज हम 25 सितंबर को बात करने जा रहे हैं अभिनेता और निर्देशक फिरोज खान के बारे में, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन। उन्हें याद करते हुए इन्होंने हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी हैं और हम उन्हीं फिल्मों में से कुछ गीत चुनकर ले आए हैं आपके लिए कार्यक्रम सुरीला सफर में।

हमारी आज की इबारत तो आपने हमारी विविध भारती के फेसबुक पेज पर पढ़ ही ली होगी, लेकिन फिर भी हम आपको सुनाने जा रहे हैं हमारी इबारत और टेक्स्ट। सुंदर लगती हो शायद इसीलिए नहीं कि सूरत इतनी हसीन है, बल्कि इसीलिए कि तुम्हारी चाहत भरी निगाहों में एक अलग अंदाज है। प्यार से प्यारे हो तुम, जब तुम ये कहती हो तो लगता है जैसे प्यार ने खुद कोई खूबसूरत नाम रख लिया हो। प्यार कहाँ किस्मत में होता है हर किसी के, ये तो बस एक खूबसूरत एहसास है जो किसी खुशनसीब दिल को मिला करता है। जब वफा साथ हो तो वही जिंदगी की सौगात बन जाती है। तुम्हारी शरारत से चेहरा चमकने लगा है, जवानी के दो दिन हैं, इन्हें यूं ही मुस्कुराने दो। चाहत भरी निगाहों से यूं ही देखते रहो तो शायद ये चमक और भी बढ़ जाएगी। देखो रंग लाई है संगत तुम्हारी, जैसे खिली हो कोई कली गुलजार की, और पहली ही मुलाकात के बाद ऐसा लगा जैसे ये यारानी हो सदियों पुरानी। तो फिर बताओ प्यार आखिर है क्या, क्यों नहीं मिलता आखिर प्यार हर किसी को, क्यों है जरूरी प्यार जिंदगी के लिए।

जी हाँ श्रोताओं, ये हमारा जो प्रश्न है इसके बारे में आप ही को बताना है कि क्यों नहीं मिलता प्यार सभी को जिंदगी में। भेज दीजिए आपके कमेंट्स, हमें इंतजार है आपके संदेशों का। और ये बताइए कि अब जो गीत सबसे पहले हम इस कार्यक्रम में आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, किनकी आवाजें हैं इस गीत में और फिल्म का नाम भी आप बताएंगे। और ये भी बता दीजिए कि जो पूछा जा रहा है ना इस गीत में कि क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है, भाई हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आप भी बताइए, लिख भेजिए अपने जवाब

जी हाँ, हमारे सभी श्रोताओं के कमेंट्स आ गए हैं। हमने जो पूछा था कि ये किस फिल्म का गीत है और किन्होंने गाया है, सभी ने सही जवाब दिया है। धर्मात्मा फिल्म का गीत है, मुकेश और कंचन की आवाजें हैं, इंदिवर के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

जी हाँ श्रोताओं, हमारे श्रोता कह रहे हैं कि मैं फिरोज खान साहब को स्टाइलिश आइकन कहूंगा। ये हमारे एक श्रोता का कहना है कि उनकी मस्त चाल, संवाद बोलने का दिलकश अंदाज, काउबॉय की इमेज वाले फिरोज खान साहब के क्या कहने। बिल्कुल सही आपने फरमाया है। एक श्रोता कह रहे हैं कि फिरोज खान जी की अभिनय क्षमता बड़ी गहरी है, रोमांटिक, गंभीर, कॉमेडी, स्टाइलिश, सभी कुछ उसकी उनकी फिल्मों में पाया जाता है। उनको शत-शत नमन। बिल्कुल। एक और श्रोता कह रहे हैं कि फिरोज खान हिंदी सिनेमा के ऐसे बहुमुखी कलाकार थे जिनका व्यक्तित्व उनकी फिल्मों की तरह ही बेहद आकर्षक और प्रभावशाली था। उनकी शानदार स्क्रीन प्रेजेंस, आत्मविश्वास, दमदार आवाज और अनोखी शैली ने उन्हें अपने दौर का विशिष्ट अभिनेता बनाया। वे केवल अभिनेता ही नहीं बल्कि सफल निर्देशक और निर्माता भी थे। अपने आधुनिक अंदाज, बेबाक व्यक्तित्व और फैशन के प्रति खास पसंद के कारण वे लंबे समय तक दर्शकों के बीच चर्चा में रहे। फिरोज खान ने अपने काम और व्यक्तित्व से हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई जिसे आज भी याद किया जाता है। हमारे एक श्रोता हैं जो हमें हमारे द्वारा बजाई गई धुनों को जो हम साथ साथ बजाकर

को सुनवाते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी भेजी है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। एक श्रोता कह रही है कि बहुत ही प्यारे लगे फिरोज खान। साथ ही वो कह रही है कि प्यार कोई सोच समझकर किया हुआ फैसला नहीं होता, ये तो बस हो जाता है। कभी किसी की एक मुस्कान से, कभी उसकी बातों से, उसकी प्यारी सी आवाज से, उसके भोलेपन से, उसकी सादगी से, और कभी किसी बिना किसी वजह के भी कोई दिल के करीब आ जाता है। पता ही नहीं चलता कि कब कोई अजनबी से अपना बन गए। आज तो लोगों की एक ही पसंद दिख रही है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, फिर से कहो, कहते रहो, जीवन का हर सपना सच्चा लगता है। फिल्म धर्मात्मा का ये गीत, जी हाँ, और ये हमने सुनवा दिया है, हमारे कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति थी ये गीत। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि आज यादों की महफिल प्रोग्राम बढ़िया गीतों से सजा था, सुरीला सफर में ऐसे गाने सुनने की चर्चा तथा सवाल जवाब की अपेक्षा करते हैं। आप सुनिए आगे ये गीत जो आज हमने शामिल किए हैं कार्यक्रम सुरीला सफर में, आनंद लीजिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की इबारत पढ़ते दिल बाग बाग हो गया, ऐसे खूबसूरत एहसास कभी जगाने के लिए मूड बनाना पड़ता था, आज शब्दों का ऐसा तिलिस्म देखने को मिला कि पढ़ते पढ़ते हम बुढ़ापा पीछे छोड़ जवान हो गए। क्या बात है, अब ढूंढते हैं प्यार को, देखिए कहाँ मिलता है। आज तो गीतों की बहार होगी, उसी में दिल बहलाते हैं और एक अच्छी दोपहरी विविध भारती के संग बिताते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपको प्यार तो है ही विविध भारती के संग। और अब जो हम गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, बताइएगा इस फिल्म का नाम।

सच्चा प्यार किसे कहते हैं ये भी साथ बताते चलिए। क्या आकर्षण भी सच्चा प्रेम दर्शा सकता है?

0: इस गीत की फिल्म का नाम आपको बताना है, लेकिन इस गीत को गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत, ये हमने आपको बताया। और अब आपको सुनवाते हैं कुछ संदेश।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को।

तो श्रोताओं, विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। और इस कार्यक्रम की ये खास बात है कि जो गीत हम चुनते हैं उससे ये कार्यक्रम बनता है सुरीला, लेकिन आपके संदेशों से बनता है सजीला। तो भेजते रहिए हमें आपके संदेश, हमें इंतजार है बेसब्री से आपके संदेशों का। अभी हमारे श्रोता कह रहे हैं कि प्यार में पढ़ना एक अतार्किक रोमांच है, एक ऐसी चीज है जिसे हम अपनी सामान्य और तर्क संगत दुनिया में अलौकिक मानने के लिए प्रलोभित होते हैं। प्यार की भावना व्यक्ति के अस्तित्व की अनुभूति को जीवन के सभी पहलुओं में एक सर्वोच्च आनंद की अनुभूति से भर देती है। उन्होंने एक बड़ा ही प्रयास से बहुत बड़ा संदेश हमें भेजा है, विस्तार में तो हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत लंबा है, फिर भी आपका संदेश हमने शामिल किया है कार्यक्रम में। आपके इस प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रोता कह रही हैं कि प्यार तो कब, क्यों, कहां और किससे हो जाए पता ही नहीं चलता। माना कि किसी को देखा और वो दिल में उतर गया और प्यार हो गया, पर प्यार जब चेहरे पे झलकता है तो खूबसूरती और बढ़ जाती है। उसकी एक नजर मिल जाए इतनी फरियाद।

चाहत सचमुच निगाहों का ही खेल है, उनकी निगाह पड़ी तो दिल खुश, न पड़ी तो अपनी निगाहें उदास। बिल्कुल सही आपने फरमाया है। एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की यादों की महफिल सजी हुई है, यानी कि वो सुन रहे थे तब उन्होंने ये संदेश हमें भेजा, मेरा बहुत ही पसंदीदा गायक एसपी बालसुब्रमण्यम, उनकी जयंती, उन्हें याद किया जा रहा है और सुपरहिट गीतों से सजा हुआ इन्हें ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया। जी बहुत धन्यवाद। एक श्रोता कह रहे हैं कि जिंदगी की राह में जब कोई हम सफर मिल जाता है तो खामोश धड़कनों को भी एक नया साज मिल जाता है, तुम्हारी एक हल्की सी मुस्कुराहट लाती है बहार, जब तुम देखते हो तो थम जाता है संसार, मोहब्बत तो वो पावन दुआ है जो भगवान से मिलवाती है, सच्ची चाहत ही दिलों के सारे फासले मिटाती है, भुलाकर शिकवे गिले थाम लो हाथ। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। जी हाँ, वो गीत कार्यक्रम का पहला गीत नहीं था, वो गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि प्यार सिर्फ खूबसूरत चेहरे और बातों से नहीं बल्कि नीयत की सच्चाई से भी पहचाना जाता है। मन में जरा सा भी संदेह अगर उठ जाता है तो प्यार प्यार नहीं मिल पाता और खो जाता है मिलने की बजाय।

जी श्रोताओं, बताते चलिए कि जब किसी से प्यार हो जाता है और वो हमारा साथी बन जाता है, तो आप उसकी तारीफ में क्या कहना पसंद करते हैं? कब आपने आखिरी बार तारीफ की थी उसकी और कैसे, ये बताइए।

जी हाँ, एक और गीत हमने आपको सुनवाया फिल्म धर्मात्मा से। आवाजें फिर से मुकेश और कंचन की थी। इंदीवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि प्रेम अपने आप में निर्मलता, शुद्धता, करुणा और असीम आनंद को समेटे हुए है और यह वह चुंबकीय खिंचाव है जो इंसानों को ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति के कण कण को एक सूत्र में बांध कर रखता है। आज के आधुनिक और व्यवहारिक दौर में भले ही प्यार के मायने और उसकी अभिव्यक्ति के तरीके बदल गए हों, लेकिन इसका मूल स्वरूप आज भी वही है। प्यार का मतलब केवल किसी के ख्यालों में खोए रहना या पजेसिव होना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के आत्मिक विकास में सहायक बनना है। क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात आपने कही। प्यार जीवन का वह खूबसूरत उपहार है जिसे जितना बिना किसी स्वाद के बांटा जाए यह उतना ही गहरा और अनंत होता जाता है। बिल्कुल 100%। अच्छा, हमने आपसे पूछा कि आपने कब आखिरी बार अपने साथी की या जिनसे आप प्यार करते हैं उनकी तारीफ की थी, वो बताते चलिए। हालांकि खूबसूरती की तारीफ ना की जाए तो कैसे चलेगा? हर खूबसूरत चीज की, अंदाज की, व्यवहार की, बात की या किसी खूबसूरत इंसान की तारीफ तो कर ही देना चाहिए, खासकर जिससे आप प्यार करते हैं, उनकी तारीफ में कोई कमी नहीं आना चाहिए। तो बताइए आपने कब की थी तारीफ उनकी जिन्हें आप जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हमारी एक श्रोता कहती है कि तुम्हारी मौजूदगी से जिंदगी में एक अलग ही नूर है। शायद इसलिए नहीं कि तुम परफेक्ट हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी सादगी दिल को छू जाती है। जब तुम अपनी उन मासूम नजरों से देखते हो तो लगता है जैसे वक्त ठहर सा गया हो। प्यार कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक ऐसा पावन बंधन है जो दो सच्चे दिलों की धड़कन बन जाता है। जी हाँ, तुम्हारी इसी शरारत, जरा सी शरारत और वफा ने दिल को मुस्कुराना सिखा दिया। ऐसा लगता है मानो सदियों का कोई अधूरा ख्वाब आज तुम्हारे साथ मुकम्मल हो गया हो। बिल्कुल प्यार ऐसा ही एहसास दे जाता है। हमारे श्रोताओं ने हमें गीत भी लिखकर भेजे हैं। उनमें से कई गीत ऐसे हैं जो अभी तक जो बच चुके हैं वो भी शामिल हैं। आप आगे सुनते रहिए और आनंद लेती रहिए। और एक श्रोता कह रही है कि प्रेम का एहसास बड़ा सरल है मगर तकदीर के नियम बड़े जटिल हैं। यह बड़े किस्मत वालों को मिलता है। कभी कभी लगता है प्रेम परिस्थितियों पर निर्भर करता है। परिस्थितियां भी कभी कभी बड़ी अराजक हो जाती हैं। वे किसी नियम को नहीं मानती और प्रेम टूट जाता है। इंसान इसी त्रिकोण में अपने अर्थ खोजता रहता है और प्रेम की यही खोज उसे इंसान बनाती है, एक सच्चा इंसान। बहुत खूब। अब आ रहा है अगला गीत। क्या आपने किया ऐसा किसी के लिए कि वो कहे दिन तो दिन रात तो रात? भेज दीजिए हमें अपनी यादें, अपने संदेश।

हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि फिल्म सफर मुख्य कलाकार राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, फिरोज खान ये बता रहे हैं। और एक श्रोता कह रहे हैं कि मैं तो अपनी श्रीमती जी की तारीफ तो करता हूं और कहता हूं जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, साथ ही साथ विविध भारती की तारीफ भी करता हूं। क्या बात है, ये तो बहुत जरूरी है, आखिर विविध भारती भी तो आपके जीवन का प्यारा साथी है। एक श्रोता कह रहे हैं कि फिरोज खान सिर्फ अभिनेता नहीं थे बल्कि एक सफल फिल्म निर्माता और निर्देशक भी थे। उन्होंने कुर्बानी, धर्मात्मा और अपराध जैसी बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन किया। भव्य और बड़े बजट की फिल्में, उनकी फिल्मों में खूबसूरत लोकेशन, भव्य सेट, बेहतरीन गाड़ियां और शानदार संगीत उनकी पहचान थे। एक श्रोता कहते हैं कि बहुत प्यारा गीत है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, मुकेश ने गाया है, बिल्कुल। एक श्रोता कह रही है प्यार में पसंद नापसंद का अंतर स्वाभाविक है, लेकिन इसके लिए जबरदस्ती सब कुछ अपनाना जरूरी नहीं है, बल्कि यह आपसी समझ और सम्मान पर आधारित होता है। जी हाँ, प्यार तो ऐसा ही होता है। एक श्रोता कह रही है कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे गीत बेहद लोकप्रिय गीत, भावुक गाना है, जिसे मुकेश ने अपनी जादुई आवाज दी है। जी हाँ, हमारे को श्रोता कह रहे हैं कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है, परंतु दोनों दिलों के बीच में ईमानदारी और विश्वास होना जरूरी है। प्यार जीवन में जरूरी है, तभी तो मैं अपनी धर्मपत्नी को यह गीत गाकर सुनाता हूं। तेरी सूरत पर नहीं, मैं तेरी सादगी पे मरता हूं। क्या बात है, तेरा साथ है तो इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। बहुत सुंदर। एक और श्रोता कह रहे हैं कि कंचन जो

तो एक उभरती गायिका रही हैं। जब कल्याण जी आनंद जी का संगीत अपने शबाब पर था, तभी उन्हें कुर्बानी, धर्मात्मा और कालिया जैसे फिल्मों में गाने का मौका मिला। कल्याण जी वीर जी शाह के भाई बाबला शाह के साथ उन्होंने कई लोकगीत गाए। चटनी गीत उनका खूब चला था। बाद में बाबला शाह से कंचन ने शादी कर ली। इस जानकारी के लिए शुक्रिया। एक श्रोता कह रही है कि तारीफ की हमने उस परमात्मा की जिसने ये सुंदर और प्यारा सा संसार बनाया, इतनी सुंदर प्रकृति बनाई, क्या बात है। एक और श्रोता कह रही है कि हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और फिल्म निर्माता फिरोज खान अपनी विशिष्ट शैली, अनूठे अंदाज, डैशिंग पर्सनालिटी के लिए बॉलीवुड के पहले स्टाइल आइकन और काउबॉय के रूप में जाने जाते थे। फिरोज खान स्टाइलिश और ग्लैमरस अंदाज उन्हें बॉलीवुड का सबसे स्टाइलिश अभिनेता माना जाता था। उनके लेदर बूट्स, हैट्स, सिगार और वेस्टर्न लुक ने हिंदी सिनेमा में एक नया ट्रेंड सेट किया था। बिल्कुल, आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है, ये हमें लिख भेजिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि हमारी शादी के पहले मैंने पत्नी से एक साल प्यार किया, एक साल बाद हमारी शादी हुई। अब हमारी शादी को 40 वर्ष हो चुके हैं, हम आज तक प्यार कर रहे हैं। जी, प्यार तो करते रहिए। सफर फिल्म का गीत हमने आपको सुनवा दिया था मुकेश की आवाज में। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उससे जुड़ी यादें हम तक पहुंचाइए, क्योंकि ये है नागिन फिल्म का गीत। भाई, हमने तो ये फिल्म बचपन में देखी थी और इसे देखने पर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। आप अपनी यादों के बारे में बताइए कि क्या आपने इस फिल्म को देखकर सोचा था।

एक श्रोता कह रहे हैं कि मैं तो हमेशा अपनी श्रीमती जी की तारीफ करता रहता हूं, खासकर आज जब जबलपुर में रिमझिम बारिश हो रही है और विविध भारती पर बेहतरीन गीत बज रहे हैं। मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं, अदरक इलायची की चाय की डिमांड भी कर रहा हूं। क्या बात है।

एक श्रोता कह रहे हैं कि मैंने प्यार किया था पर ब्रेकअप हुआ, उसके बाद मैंने कभी प्यार किया नहीं, अरेंज मैरिज किया और उनसे ही प्यार किया। ये तो बहुत अच्छी बात है।

जी हाँ, तेरे मेरे याराने हो सदियों पुराने, जब प्रेम हो जाता है तो याराने कुछ ऐसे ही लगते हैं। फिल्म का नाम तो हमने आपको बता दिया था, बाकी जानकारी आप बता दीजिए कि किसने लिखा है इस गीत को, किसने संगीतबद्ध किया है। और हमने आपसे पूछा था, देखिए हमने तो बचपन में देखी थी फिल्म, तो हम बड़े छोटे थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। फिल्म का वो खौफनाक रोमांचक अंदाज देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। पहली बार एक नागिन को हमने एक्ट्रेस या एक्टर के रूप में देखा था। तो ये तो हमारी बात थी, हमने आपके अनुभव पूछे हैं, आपने भेजे हमें संदेश, देख लेते हैं हम। फिलहाल हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि प्यार सिर्फ पाने से नहीं पर उसकी यादों से भी प्यार किया जाता है। मैं मोबाइल एप्लीकेशन से ओमान से सुन रहा हूं। एक श्रोता हमारे फिलिपिन मनीला से सुन रहे हैं, और क्या बात है, हमारे कई श्रोता हैं जो देश के बाहर से भी हमें सुनते हैं विविध भारती को, और आनंद लेते हैं इन गीतों का। संदेश भेजने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। एक श्रोता कह रही है कि रही तारीफ करने की बात तो श्रीमती जी की, जी हाँ, एक श्रोता कह रहे हैं कि रही तारीफ करने की बात तो श्रीमती जी की करते हैं, लेकिन सुनने को यह मिलता है कि आप तो काम बताओ क्या है। जी कभी कभी तारीफ करने से ऐसा भी लग जाता है, संदेह हो जाता है ना कि कोई काम ही होगा जरूर। भाई बिना काम के भी प्यार जता देना चाहिए।

एक श्रोता कह रही है, क्या खूब लगती हूँ हिंदी सिनेमा के उस दौर का प्रतिनिधित्व करता है जहां धुनों में आत्मा और शब्दों में गहराई हुआ करती थी। इंदिवर ने प्रेम की मासूमियत और अमरता को सरल शब्दों में पिरोया है। सूरज होगा जब तक नील गगन में और प्यासे दिल को आज मिला है सागर जैसी पंक्तियां प्रेम के अटूट विश्वास और तृप्ति को दर्शाती है। यह कंचन के सबसे सफल गानों में से एक है। क्या बात है। एक श्रोता कह रही है, तब तारीफ मजबूरी हो जाती है, नहीं करने पर प्यार का नशा उतर जाता है। हमारी एक श्रोता हमसे साझा कर रही है कि क्या खूब लगती हो ये गीत हमने कैसेट में भी बहुत सुना और रेडियो पर भी बहुत। एक श्रोता कह रहे हैं कि मेरी लिस्ट का तीसरा गीत बच चुका है। जी बिल्कुल, बस आप आनंद लेते रहिए इस कार्यक्रम में।

एक श्रोता कहते हैं कि सांसें चलना जिंदगी की पहचान हो सकती है, पर उस जिंदगी में रंग और अर्थ भरने का काम प्यार ही करता है। प्यार इंसान को अकेलेपन के एहसास से बचाता है और हर मुश्किल मोड़ पर एक मुख संबल देता है। प्यार हमें सहानुभूति, दया और निस्वार्थ होना सिखाता है। बिल्कुल, बहुत खूब। तो श्रोताओं, अब जो गीत आने जा रहा है, बताइएगा कि ये गीत गाया किसने है और संगीतबद्ध किसने किया है, साथ ही फिल्म का नाम भी आप ही बताएंगे।

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: जी हाँ, अभी हमने आपको गीत सुनवाया और हमने आपसे पूछा था कि कौन सी फिल्म का गीत है, किसने संगीतबद्ध किया है, किसने लिखा है, और आपने जवाब भेजे हैं हमें बिल्कुल सही। ऊंचे लोग इस फिल्म का ये गीत था। मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया था, मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था, चित्रगुप्त का संगीत। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि प्यार सूरत का सौदा नहीं, दो दिलों के बीच वो खामोश ठहराव है जिसमें किसी और की मुस्कान तुम्हारी अपनी लगने लगती है, और हर किसी को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि सब उसे ढूंढते तो हैं, पर निभाने का हुनर, झुकने की नरमी और ठहर कर देखने की नजर सबके पास नहीं होती, और जिंदगी में वो इसीलिए जरूरी है कि जिस्म तो रोटी कपड़े से चल जाता है पर रूह तब ही खिलती है जब कोई चाहत भरी निगाह से देखे, कोई वफा के साथ पास हो, वरना जिंदगी गुजर जाती है पर गुलजार नहीं होती। बहुत सुंदर बात आपने कही है, और साथ ही आपने कुछ गाने भी लिख भेजे हैं। एक श्रोता ने कहा है, सबसे ज्यादा प्यार करते हैं विविध भारती।

एक श्रोता कह रहे हैं कि अपने आकर्षक व्यक्तित्व के कारण वे अपने समकालीन हीरोइनों में लोकप्रिय थे, यानी कि वो फिरोज खान के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ हीरोइनों ने अभी भी उनके बारे में ये कहा है। और एक श्रोता कह रहे हैं कि सच्चा प्यार एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इसे बस दिल से महसूस किया जाता है। जहां दूरियां चाहे कितनी भी हो, लेकिन दिल का जुड़ाव, एक दूसरे की फिक्र कभी कम नहीं होती। सच में खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें ऐसा पवित्र और सच्चा प्यार नसीब होता है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। सच्चा प्यार तो झुक नहीं सकता, दिल की उमंग ये कहती है। यहाँ सच्चे प्यार की ही सच्चाई बताई जा रही है, और यह सच्चा प्यार वैसे तो अनिर्वचनीय होते हुए मुख फल आस्वाद ऐसा उन्होंने कुछ लिखा है कि किंतु यह प्यार त्याग और समर्पण के दृढ़ दीवार से न झुकते हुए अपने विनम्रता के हथियार से समस्त संसार के झंझावतों से लड़ने में समर्थ भी होता है। क्या बात है, हिंदी के शब्दों का सुंदर उपयोग आपने अपने संदेश में किया है। तो अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो होगा कार्यक्रम का आखिरी गीत। बता दीजिए, हमने यही तो सवाल पूछा था आपसे हमारी इबारत के अंत में कि आखिर क्यों नहीं मिलता सभी को प्यार जिंदगी में। अब ये जो गीत सुनवा रहे हैं किसने गाया है ये बता दीजिए।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज अपने सुरीला सफर सुरीला धड़कन कार्यक्रम में फिर से प्रस्तुत गद्य पद्यमयी इबारत की इबारत से इबादत से यह बात सामने आती है कि आज सुप्रसिद्ध अभिनेता निर्माता ने

कभी कभी दो लोग एक दूसरे की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं, साथ रहना भी अच्छा लगता है, बातचीत में मिठास भी होती है, लेकिन फिर भी उनके बीच में प्यार जन्म नहीं लेता। शायद इसलिए हर किसी को जिंदगी में सच्चा प्यार नहीं मिल पाता, क्योंकि प्यार सिर्फ किसी का मिल जाना नहीं, प्यार है किसी के साथ अपने मन की वो जगह बांट लेना जहां हम बिना किसी दिखावे के अपने सबसे सच्चे रूप में रह सकें। जी हाँ, तो आज आप सभी के संदेशों के लिए, सभी जानकारियों के लिए और हमसे अपनी यादों को साझा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम से अब इजाजत लेती हूँ मैं, पूजा नारानिया, दीजिए इजाजत, नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 47वीं कड़ी।

प्रसंग। आने वाले समय में राष्ट्रगीत कौन सा होगा, इस विषय में आम लोगों के या स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले आंदोलनकारियों के मन में कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं था। मानो वंदे मातरम ही राष्ट्रगीत होगा, ऐसा उन्हें विश्वास था। इस स्वतंत्रता आंदोलन में पूरे देश का नेतृत्व करने वाले और सभी के मन में आदर का स्थान रखने वाले महात्मा गांधी की इस बारे में भूमिका अभी स्पष्ट होनी थी। कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा गाए गए वंदे मातरम का प्रभाव उनके मन पर स्थायी रूप से रहा था। 29 अक्टूबर 1947 को गांधी जी की दिल्ली में हुई प्रार्थना सभा में श्री अरविंद के अध्यात्म मार्ग के शिष्य और गायक दिलीप कुमार रॉय ने अपनी संगीत रचना में वंदे मातरम का गायन किया। अब सुनिए दिलीप कुमार रॉय के स्वर में वंदे मातरम की वो संगीत रचना जो उन्होंने बंगाली लोकगीत शैली में गाई थी।

वंदे मातरम इस गीत के प्रति दिलीप कुमार रॉय को असाधारण आत्मीयता थी, इसलिए उन्होंने दक्षिण हिंदुस्तानी और उत्तर हिंदुस्तानी भारत की दो मुख्य गायन पद्धतियों में जुगलबंदी या सहगायन के रूप में संगीत रचना बनाई। भारत रत्न M.S. सुब्बुलक्ष्मी और स्वयं दिलीप कुमार रॉय ने ये गायन किया था।

0: भारत स्वतंत्र हुआ फिर भी संविधान सभा की अंतिम बैठक अभी होनी थी। राष्ट्रगीत कौन सा हो इस विषय पर चर्चा शुरू थी। पंडित नेहरू की पहल पर रविन्द्रनाथ के जन गण मन गीत का राष्ट्रगीत के लिए आग्रह किया गया। वंदे मातरम में राष्ट्रगीत के अनुरूप या अंतर्राष्ट्रीय समूह में बजाई जा सके ऐसी संगीत रचना नहीं है ऐसा एक मुद्दा रखा गया था। उसका समाचार पढ़कर प्रसिद्ध संगीत निर्देशक और गायक मास्टर कृष्ण राव ने पंडित नेहरू को टेलीग्राम करके एक संगीत विशेषज्ञ के रूप में राष्ट्रगीत के बारे में मेरे विचार लिए जाएं ऐसी विनती की।
1: मास्टर कृष्ण राव फुलंब्रीकर। मराठी संगीत नाटक, शास्त्रीय संगीत और नवागत फिल्म संगीत के क्षेत्र के एक बड़े व्यक्तित्व थे। पंडित भास्कर बुआ बखले की सांगीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाले मास्टर कृष्ण राव एक प्रयोगशील संगीतकार के रूप में प्रसिद्ध थे। 1936 के आसपास प्रभात फिल्म कंपनी में संगीत निर्देशक के रूप में काम करते हुए वी शांताराम की पहल पर मास्टर ने स्वयं अपनी झिंझोटी राग की रचना प्रभात के स्टूडियो में ही ध्वनिमुद्रित की थी। उस समय के फिल्म संगीत की संगीत रचना के अनुसार ही उसमें वाद्यों का उपयोग और ऑर्केस्ट्रेशन किया गया था।

मास्टर कृष्ण राव ने मराठी संगीत नाटकों में बाल गंधर्व के साथ काम किया था। कुलवधू जैसे नए नाटकों को अलग संगीत भी दिया था। संगीत नाटक के अंत में वंदे मातरम गायन की जो परंपरा थी वह संगीत रचना भी मास्टर की ही थी। आगे चलकर छोटा गंधर्व जैसे प्रसिद्ध गायक अभिनेता जयराम और जयमाला शिलेदार परिवार, राम मराठे जैसे गायक अभिनेता अपने संगीत नाटक के अंत में वंदे मातरम का गायन करते थे। छोटा गंधर्व द्वारा संगीत सौभद्र इस नाटक के अंत में नांदा सौख्य भरे इस पद के साथ जोड़कर गाया गया वंदे मातरम का ये ध्वनि मुद्रण आप सुनिए।

0: मास्टर कृष्णराव झिंझोटी राग में निबद्ध वंदे मातरम का गायन अनेक बड़े कार्यक्रमों में करते थे। परंतु आकाशवाणी पर वंदे मातरम गायन की अनुमति नहीं मिल रही थी। अंत में मास्टर कृष्णराव ने सीधे प्रसारित हो रहे आकाशवाणी पर अपने कार्यक्रम में झिंझोटी राग के नाट्य पद को जोड़कर बिना रुके वंदे मातरम गाना शुरू कर दिया। ये ध्यान में आते ही स्टेशन डायरेक्टर बुखारी ने तुरंत विद्युत प्रवाह बंद कर दिया। वंदे मातरम का गायन रोके जाने के विरोध में मास्टर ने आकाशवाणी पर बहिष्कार कर दिया। आगे 10 साल बाद 1947 में चैत्र पाड़वा पर वल्लभ भाई पटेल के निमंत्रण पर आकाशवाणी पर बुखारी की ही उपस्थिति में वंदे मातरम गाकर बहिष्कार वापस लिया। बीच के काल में 1942 के 8 अगस्त को मुंबई के भारत छोड़ो आंदोलन की सभा में मास्टर कृष्णराव ने ही वंदे मातरम गाया था। इसलिए फिर एक बार वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाने के लिए मास्टर ने प्रयास शुरू किए।
1: मास्टर कृष्णराव ने पंडित नेहरू को टेलीग्राम किया। उसका उत्तर आया, पंडित नेहरू और अन्य संसद सदस्यों के सामने प्रदर्शन दिखाने की अनुमति मिली। उसकी पूर्व तैयारी के रूप में मास्टर स्वयं पुणे के पुलिस संचालनालय की पुलिस परेड के साथ खुद कदम मिलाकर मार्च पास्ट की दृष्टि से इस संगीत रचना की उपयोगिता को परख रहे थे। दिल्ली में जनरल करियप्पा के सामने और पंडित नेहरू के सामने उसका प्रदर्शन हुआ। मिलिट्री बैंड के प्रमुख लजपत सिंह ने उसे बजाकर देखा और उसकी सफलता की गारंटी दी।

0: परंतु यह राष्ट्रगीत दुनिया के अन्य देशों के घोष दलों को भी बजाना आना चाहिए। पाश्चात्य संगीत रचना से भी उसकी निकटता हो, ऐसी सूचना मिलने के बाद मास्टर कृष्ण राव मुंबई आए और नायगांव के पुलिस मुख्यालय के ब्रिटिश संचालित घोष विभाग के प्रमुख सी आर गार्डनर के सहयोग से विदेशी पद्धति की स्वर रचना में मूल धुन को धक्का न लगाते हुए घोष पर अभ्यास किया। नेविल बैंड के प्रमुख स्टैनले हिल्स ने ब्रास वाद्यों पर यह संगीत रचना तैयार की। इन दोनों पाश्चात्य संगीत विशेषज्ञों ने मास्टर कृष्ण राव की संगीत रचना के बारे में अत्यंत अनुकूल मत और अभिप्राय दिए, इसलिए अत्यंत उत्साह से मास्टर कृष्ण राव ने संविधान सभा और पंडित नेहरू से फिर से नए प्रदर्शन की अनुमति मांगी।
1: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
2: आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस श्रृंखला की 47वीं कड़ी, मूल मराठी संहिता, मिलिंद सबनिस।

0: हिंदी अनुवाद, संकलन और शीर्षक गीत रचना जैन पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जैन पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, वंदे मातरम के दुर्लभ ध्वनि मुद्रण मिलिंद सबनिस जी के संग्रह से साभार, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: जश्न विविध भारती की

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर आईबीएसए संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा, अगले 12 घंटों में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
3: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
2: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
3: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7

0: और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही सात सूत्रों को आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक रिपोर्ट।
2: पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान विचारक, दार्शनिक और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे। उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्नातक की पढ़ाई के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और आरएसएस के प्रचारक बन गए। प्रचारक बनने से पहले उन्होंने वर्ष 1939 और 1942 में संघ में प्रशिक्षण लिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि तेजी से परस्पर जुड़ती दुनिया में उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान अलग थलग रहकर नहीं किया जा सकता। श्री राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में अंतर्राष्ट्रीय सामरिक सहभागिता कार्यक्रम के चौथे संस्करण के प्रतिभागियों से संवाद में ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत 7.8% की विकास दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने ये बात कही। श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था, अनुकूल औद्योगिक नीतियों और सक्रिय शासन की मदद से आज उत्तर प्रदेश में आकर्षक निवेश वातावरण बना है।
3: उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है, इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश लक्ष्य तय कर सकता है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। इस प्रदर्शनी में कई व्यापारिक समझौते भी होने वाले हैं। दुनिया भर से आए हुए खरीदार यहाँ मौजूद है और इससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, उत्पादन और बिक्री तीनों क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य देश में विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा के साथ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। तीनों नेताओं ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर IBSA संवाद मंच की बैठक में भाग लिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। नई दिल्ली में आज आरोग्य मंथन 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कारण अब 90% कैंसर मरीजों का इलाज 30 दिन के अंदर शुरू हो रहा है। श्री नड्डा ने नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रजिस्ट्री मोबाइल ऐप और सिक्योर डेटा एनवायरमेंट एप्लीकेशन भी शुरू किए। रेलवे ने गुजरात के भुज और

0: बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी। ये रेलगाड़ी समाखियाली, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, बरेली, इज्जतनगर और पीलीभीत सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशन पर रुकेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि भुज से बरौनी के लिए सेवा सोमवार, बुधवार और शनिवार को, जबकि बरौनी से भुज तक सेवा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये नई सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। इससे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस सेवा को मथुरा स्टेशन तक विस्तारित करने की भी मंजूरी दे दी है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ मैं सरफिरोजी।
1: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्वाचन आयोग पर लगाए आरोपों को गलत बताया है। अमृतसर में श्री मेघवाल ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग सही काम नहीं कर रहा है तो केरलम में कांग्रेस चुनाव कैसे जीत गई। श्री मेघवाल नशा मुक्त पंजाब यात्रा में शामिल होने के लिए अमृतसर में हैं। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
2: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र